मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड्स हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो

0: निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशगान से।

कार्यक्रम वंदना में अभी आपने सुना मुकेश और साथियों के स्वरों में इस भक्ति गीत को। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए शर्मा बंधु के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: आशा भोसले के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव, साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए चिंतन में आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल के विचार, वाचक स्वर है सुनील केशव देवधर का।
1: वैदिक ऋषियों में अथर्वा ऋषि का प्रमुख स्थान है। पूरे अथर्व वेद की ऋचाओं का दृष्टा है वो। बड़ी महिमा है अथर्वा की। गोपथ ब्राह्मण में एक कथा है, ब्रह्म प्रारंभ में अकेला था। अन्य के निर्माण का विचार आया और ब्रह्म तपस्या करने लगा। तपस्या के श्रम से ब्रह्म के रोम कूपों से पसीना की धाराएं बहने लगी। इन धाराओं में ब्रह्म ने अपना बिंब देखा। देखते ही ब्रह्म का रेतस स्कंदित हो गया। पसीने की धाराएं इस ब्रह्म वीर्य से मिली और दो भागों में बट गईं। एक धारा खारी, अशांत और अपेय, ये धारा समुद्र रूप में प्रतिष्ठित हुई। दूसरी धारा मधुर, शांत और सुस्वादु। इस दूसरी शांत सौम्य धारा में जो ब्रह्म के वीर्य का अंश था, उससे भृगु नाम का ऋषि उत्पन्न हुआ। भृगु का सृजन होते ही ब्रह्म अदृश्य हो गया। भृगु ने अपने सृष्टा की खोज की। भृगु ने दिव्य वाणी सुनी, हे भृगु, तुम अपने सृष्टा को इन जलों में खोजो। भृगु को जलों में अथर्वा मिले। अथर्वा ने तपस्या की, मंत्रों को प्रत्यक्ष किया। अथर्व वेद के संपूर्ण दृष्टा अथर्वा हुए। अथर्वा महान प्रजापति हैं। वे अग्नि के रहस्य वेत्ता हैं। वे प्रथम ऋषि हैं जिन्होंने अग्नि को मंथन कर यज्ञ के लिए प्रकट किया है। ऋग्वेद में कहा गया है, अग्नि ही जातो अथर्वणा। महाभारत के कर्ण पर्व में अथर्वा को शांति कर्म में पारंगत उपद्रवों के नाशक ऋषि के रूप में स्मरण किया गया है। मार्कंडेय पुराण में आया है कि अथर्वा जिस जनपद में निवास करते थे वहां शांति रहती थी, उपद्रव समाप्त हो जाते थे। अथर्वा मथु विद्या और काम विद्या के वेत्ता हैं। अथर्वा के काम सूक्त में व्यक्त विचारों की हम यहां चिंता करें। ऋषि कहता है, काम देवों, पितरों और मनुष्यों से पूर्व में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो महान है। काम है क्या? मनस्तत्व की शक्ति काम है। मन का बीज काम है। काम बीज से सृष्टि उपजती है, इसलिए काम अध्यक्ष है। काम की दोहरी शक्तियां हैं, वो निर्माण करता है, नाश करता है। शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियां काम की हैं। अतः काम वाजी यानी पराक्रमी है और उग्र भी है। ऋषि अथर्वा उसकी दोनों वृत्तियों का प्रार्थी है। सपत्नों, शत्रुओं को कुचलने में, व्यक्ति की निम्नगामी वृत्तियों के दमन में काम की अशुभ शक्तियों की आवश्यकता है। उदात्त, ऊर्ध्वगामी, श्रेष्ठ उच्चतर गुणों और वृत्तियों के विकास में काम की शुभ शक्तियों की सहायता हेतु ऋषि प्रार्थी है। वह प्रार्थना करता है कि काम इंद्राग्नि के साथ रथारूढ़ होकर आवे और शत्रुओं को नीचे गिरा दे। यहाँ इंद्र, अग्नि और काम, इन तीनों देवों का एक साथ स्मरण है। अग्नि वाक है, इंद्र प्राण है और काम मनस है। मनस प्राण, मन प्राण और वाक अर्थात पूर्ण जीवन का छंद। ऋषि कहता है, हे काम, जो तेरी दुहिता है उस धेनु कहते हैं। ये विविध ऐश्वर्यों से युक्त वाणी ही है, ऐसा मनीष कहते हैं। वाणी काम की पुत्री है। वाणी यानी वाक विविध ऐश्वर्यों की दात्री है। वो धेनु है, प्रकाशिका है, पालिका है, पोषिका है। वाक स्पष्ट संकेत है। मन से जो काम के उत्स से ही अभिव्यक्ति की धारा जन्मती है। हमें व्यक्त करने के लिए जो उपकरण है उसका उपादान काम है, इसलिए काम देव है। देव है इसलिए दिव्य है, उपास्य है। काम की उपासना मधु विद्या की पूर्णता है। मन प्राण वाक के सामंजस्य का रहस्य यहां अथर्वा के काम सूक्त में उद्घाटित हुआ है।
0: अभी श्रोता सुन रहे थे चिंतन में आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल के विचार, वाचक स्वर था सुनील केशव देवधर का। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव, साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंड के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा। कृषि वानिकी क्यों और कैसे, जानकारी दे रहे हैं एसएस चौधरी।
1: किसान भाइयों, ये देखा जा रहा है कि अब वन क्षेत्र पहले की तुलना में काफी कम है, जबकि प्रकृति में पर्यावरण संतुलन की अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वनों पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। हमें बंजर समस्याग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाकर खेती के लिए उपयोग में लाना है, तो इसके लिए एक ही समाधान है, कृषि वानिकी पद्धति। इसके द्वारा खाद्यान्न, हरा चारा, ईंधन व इमारती लकड़ी की पूर्ति भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाकर और भूमि कटाव को रोक करके की जा सकती है। कृषि वानिकी भूमि प्रबंध की ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड पर कृषि फसलें और बहुउद्देशीय वृक्षों, झाड़ियों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी लगातार या क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इस पद्धति को अपनाने से प्रति इकाई भूमि की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। उन स्थानों पर जहाँ भूमि का कटाव अधिक होता है या भूमि समस्याग्रस्त है, जैसे अम्लीय, लवणीय या क्षारीय है, या जलवायु मौसम की अनिश्चितता से कृषि फसलें प्रभावित होती हैं, ये पद्धति बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों, कृषि वानिकी अपनाने से बहुत से लाभ हैं। एक ही भूखंड पर कई प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का एक साथ उत्पादन किया जा सकता है, जैसे खाद्यान्न, फल, ईंधन, रेशा या खाद। अनुपजाऊ या समस्याग्रस्त भूमि को कम समय में उपजाऊ या खेती के योग्य भी बनाया जा सकता है। ये पद्धति भूमि संरक्षक का एक सर्वोत्तम उपाय है। इसी तरह नमी का संरक्षण भी किया जा सकता है और बेमौसम बरसात का बहुउद्देशीय फसलों व पेड़ों के माध्यम से अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। कृषि वानिकी को अपनाकर ग्रामीण भाई अपने और बाजार की ईंधन की मांग, इमारती लकड़ी, औजारों के काम आने वाली लकड़ी और हरे चारे की आवश्यकता की पूर्ति बड़े आराम से कर सकते हैं। इससे पर्यावरण को सुधारने में भी काफी मदद मिलती है। अब कृषि वानिकी के विभिन्न तरीके भी हैं, उनको भी किसान भाई जान लें। कृषि वन पद्धति, वन चरागाह पद्धति, कृषि उद्यान की पद्धति। इसी तरह कृषि वन चरागाह पद्धति, उद्यान की चरागाह पद्धति, कृषि उद्यान की चरागाह पद्धति, कृषि वन उद्यान की और बाउंड्री वृक्षारोपण। कृषि वन पद्धति में कृषि योग्य भूमि में बहुउद्देशीय पेड़ों को लाइनों के बीच खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। ये पद्धति सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसमें कृषि उपज के साथ साथ जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, रेशा और चारा

0: होता है। वंचरागा पद्धति में ईंधन व चारा प्राप्त होने वाले वृक्षों की लाइनों के बीच में घास और दलहनी फसलों को लगाते हैं। ये पद्धति बंजर, पथरीली या अनुपजाऊ भूमि से ईंधन व चारा प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। कृषि उद्यान की पद्धति के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि में फलदार वृक्षों को लगाते हैं। इस पद्धति में खाद्यान्न के साथ साथ विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जिससे आमदनी बढ़ती है। कृषि वन चरागाह पद्धति, इस पद्धति में बहुउद्देशीय वृक्षों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की घासें उगाई जाती हैं, जिससे जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी और पशु चारा मिलता है। ये प्रणाली पशुपालन व दुग्ध विकास क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। कुछ और कृषि वानिकी पद्धतियों में उद्यान की चरागाह पद्धति, इस प्रणाली में फलदार वृक्षों के साथ साथ विभिन्न चारा प्रदान करने वाली फसलों को हम उगाते हैं। ये विधि सिंचित क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होती है। कृषि उद्यान की चरागाह पद्धति में कृषि योग्य भूमि में फलदार वृक्षों के बीच विभिन्न चारे वाली फसलें उगाते हैं। इससे चारा, फल, जलाऊ लकड़ी के अलावा पर्यावरण में सुधार और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो ये कुछ बातें हैं किसान भाइयों, यदि हम कृषि वानिकी अपनाएं तो चारा के साथ साथ जलाऊ लकड़ी भी मिलेगी और पर्यावरण भी संतुलित रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, कृषि वानिकी क्यों और कैसे, जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव साथ आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए सुनिए सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई जरा देख।

बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।

0: बेटियां माता पिता का ही नहीं देश का नाम भी रोशन करती हैं। उन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही देश की मांग है आज।
2: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के।
4: श्रवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्त्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतङ्कवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौका वहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
5: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
4: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीनसभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिककूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिकसम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाहः, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिण 24 परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्ररीक्षां कुर्वन्ति येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामी दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा चण्डीगढ़ दिल्ली पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा राजस्थान तेलंगाना उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः संभवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
6: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7:20 पर श्रोता आनंद लेंगे दिनेश चंद्र दुबे के काव्य पाठ का। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर।

सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी साधना गोरे, सुबह 9:23 पर राग सलाग बराली तोड़ी में आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर।

दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। आज महिला कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपराह्न 1 बजे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे दोपहर 2 बजे और 2:30 पर।

शाम 4 बजे श्रोता सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा शाम 5:02 पर। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5:33 पर। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग श्रोता सुनेंगे शाम 6 बजे।

हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होता है शाम 7:20 पर। आज इसमें चर्चा होगी जल संरक्षण हम सभी का दायित्व, अग्निवीर योजना और विविधता का विश्व दिवस। साथ ही सुनिएगा भेंटवार्ता, धान की सीधी बीज बुवाई, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा से बातचीत करेंगे सोहन सिंह। रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

0: अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन सब गाए मिल मधुर ग

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, 1 जून से होंगे तबादले। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अब 28 मई तक होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया, जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुखी रोडमैप देखी। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास करने और मिलकर उत्पादन करने के नए रास्ते खोल दिए हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी समझौते, भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि लोगों और समाजों की आपसी जुड़ाव से भी मजबूत होते हैं। सुश्री मेलोनी कल रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। श्री मोदी को ये मेडल एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अट्यूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती हैं। हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और उद्यम आधारित विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़, किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले वर्ष उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
3: 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं।
0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का जायजा लिया। खंडवा के खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में कल जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक ई केवाईसी अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं, आगामी प्रस्तावों और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक ली। मंडला में जिला पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विभाग द्वारा पंचायतों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में दत्तक शिशुगृह शाजापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए दिनेश चंद्र दुबे से काव्य पाठ।
1: कविता पेश कर रहा हूं, तुम्हारी मेहंदी रची कलाई के खिड़की से झांक कर मुझे अलविदा कहने की कसम, तुम पुरातन ख्यालों की नहीं हो। तुम्हारी मेहंदी रची कलाई के खिड़की से झांक कर मुझे अलविदा कहने की कसम, तुम पुरातन ख्यालों की नहीं हो। लोग भले ही तुम्हें अल्प शिक्षित ग्रामीण पुराने ख्यालों की समय के साथ न चलने वाली स्त्री माने, पर सच कहूँ मेरे लिए तुम ठीक ऐसी ही सही हो। सुनो, अभी अभी है जो तुम पड़ोसी की पत्नी की तरह बेहयाई से उसके गले में बाहें डाल, गालों पर चुम्बन ले, मुझे विदा करने बाहर तक नहीं आई थी। यह मुझ में शर्म पैदा नहीं किया है, यह मुझ में शर्म पैदा नहीं किया है, उल्टे मुझे शक्ति दिया है। इस वैभिन्न से विश्वास करो, तुम मुझ में मरे नहीं अपितु अमर हो गई हो। हाँ हाँ, उन्हें सोचने दो, कहने दो कि तुम बूमिल लिप की पक्षधर न होकर पुरुष से हर तरह बराबर होकर भी खुद को बराबर न मानकर वर्तमान नारीत्व की अमानक हो। पर सच कहूँ प्रिय, तुम मत बदलना, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही सही हो। इसके बाद एक गजल पेश कर रहा हूं, मुख पृष्ठ से न बाँचिए मजमू किताब का, मुख पृष्ठ से न बाँचिए मजमू किताब का, मुमकिन है भूल तुमसे हो कोई जुनून में। मुख पृष्ठ से न बाँचिए मजमू किताब का, मुमकिन है भूल तुमसे हो कोई जुनून में। केवल लिबास भर से न पहचान कीजिए, केवल लिबास भर से न पहचान कीजिए, हम ही हो चोर क्या पता शरीफों के वेश में, हम ही हो चोर क्या पता शरीफों के वेश में। चेहरा नहीं यहाँ कोई बिल्कुल बिना पता, चेहरा नहीं यहाँ कोई बिल्कुल बिना पता, जोगी का रूप हो मगर खंजरों साथ में, जोगी का रूप हो मगर खंजरों साथ में, ओंठों पर जो हंसी है मुमकिन वो नकली हो, ओंठों पर जो हंसी है मुमकिन वो नकली हो। लेबुल नहीं शनाख्त बदले जहान में, ओंठों पर जो हंसी है मुमकिन वो नकली हो, लेबुल नहीं शनाख्त बदले जहान में। दिखने को सुर्ख ओंठ और रुखसार हो दिनेश, दिखने को सुर्ख ओंठ और रुखसार हो दिनेश, मुमकिन है खाया गोश्त हो इंसान का रात में, मुमकिन है खाया गोश्त हो इंसान का रात में। और इसके बाद एक गीत पेश करता हूँ, भावों के जंगल में उभरे

शायद सुनी रात में उझके पायल वाले पांव।

गम सारा, नकली चेहरा ओढ़ घूमना मुझे नहीं आता है। दुस्साहस जीने का सच, दुस

अंतिम बंद है, यूं होती यदि उम्र शेष तो क्या परिवर्तन आता, यूं होती यदि उम्र शेष तो क्या परिवर्तन आता, जिसकी जैसी प्रकृति उसे क्या बदल कभी कोई पाता, विष पीने के आदि मुख में

0: Bom dia, Aura.
1: अभी श्रोता सुन रहे थे दिनेश चंद्र दुबे से काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, साथ में थे भूपिंदर। गीत के बोल लिखे थे विठल भाई पटेल ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर को फिल्म बहू बेगम में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत से सवारा है रोशन ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म बहू बेगम में। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अभी सुबह के 8 बजे तक जारी है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में गुलजार का लिखा, माफ कीजिएगा, योगेश का लिखा हुआ फिल्म मिली का ये गीत। संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म मिली में। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉबी का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म परिंदा से आवाजें हैं आशा भोसले और सुरेश वाडकर की। संगीत निर्देशन है राहुल देव बर्मन का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लावा का गीत आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है राहुल देव परमन ने।

0: आशा भोसले और मनमोहन सिंह के गाए फिल्म लावा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का
1: ग्वालियर केंद्र है। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें

0: प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि

की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया। उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है, और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार

राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी। पशुधन नष्ट हो गया था। उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरान भारत और इटली ने कृषि, विज्ञान, तकनीकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत के अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया के लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी अब 28 मई तक की जा सकेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं उन किसानों से खरीदी की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम सब त्राहिदाम त्राहिमाम कर रहे हैं। भाई क्यों ना करें, सूर्य की तपन इतनी तेज हो गई है कि हर कोई चाहता है कि अब तो बस सूरज की तपिश कुछ कम हो जाए। भाई मौसम है वो तो अपना रूप दिखा ही गए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको नई खबरें बताएं, साथ ही आपका मनोरंजन करें और आपके साथ कुछ जानकारियां साझा करें। और इसी क्रम को जारी रखते हुए लेकर आए हैं आज एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का नया अंक। आज सबसे पहले बात करते हैं हमारे और आपके सबसे पसंदीदा विषय पर। जी हाँ, आपकी मुस्कुराहट को हम भी महसूस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आज भी आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भाई चाय के शौकीनों के लिए तो ये दिन बहुत त्योहार से कम नहीं होता। आज के दिन 21 मई को दुनिया भर चाय के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को उजागर करने का जश्न मनाता है। इस दिन का उद्देश्य चाय उत्पादकों और श्रमिकों के जीवन में सुधार करना और उसके सतत उत्पादन को बढ़ावा देना है। श्रोता मित्रों, चाय से जुड़े कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। चाय की खोज लगभग 2737 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। कहा जाता है कि गलती से पेड़ की पत्तियां उबलते पानी में गिर गईं, जिससे एक नया पेय पदार्थ बन गया। पहले ये दिन 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 21 मई घोषित किया गया। 21 मई को चुनने का कारण था, इस समय अधिकांश देशों में चाय उत्पादन का नया मौसम शुरू होता है। भारत में चाय केवल एक पेय नहीं, बल्कि यह आतिथ्य सत्कार, सामाजिक मेल मिलाप और परंपरा का अभिन्न अंग है। श्रोता मित्रों, चाय विशेष रूप से ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो तनाव कम करने और पाचन में सुधार, साथ ही हृदय संबंधी समस्याओं के बचाव में सहायक हैं। चाय उद्योग दुनिया भर के लाखों लोगों, विशेषकर विकासशील देशों में महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को आजीविका और रोजगार प्रदान करता है। तो आपने आज के दिन की शुरुआत किस तरह की चाय से की है,

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी है, साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। भारत में आज ही के दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के खतरों के प्रति जागरूक करना, देश में शांति, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना, साथ ही आम जनता को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती आतंकवादी हमले में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उनकी पुण्यतिथि के दिन को ही सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को मजबूत करने और जागरूकता फैलाने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया। श्रोता साथियों, इस दिन का महत्व इसलिए जरूरी है जानना, यह दिन समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं को आतंकवाद के भयानक परिणामों और लोगों, समाज व पूरे देश पर पड़ने वाले इसके प्रभाव में शिक्षित करता है। शांति और सद्भाव, इसका उद्देश्य देशवासियों के बीच मानवीय मूल्यों, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना है। यह दिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ संकल्प लेने का प्रतीक भी माना जाता है। आज के दिन सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों में हिंसा और आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने की शपथ ली जाती है।

है। स्कूलों और कॉलेजों में वाद विवाद, सेमिनार और व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई सामाजिक और गैर सरकारी संगठन आतंकवाद के दुष्परिणामों को उजागर करने के लिए रैलियां और प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं।

और श्रोता मित्रों, हमारे साथ आप भी इसी तरह रंग में रंगे रहिए। इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को समाप्त करने की अब अरुणा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं साधना गोरे। आप सुनेंगे राग सलाग बराली तोड़ी में शास्त्रीय गायन। तबला संगत है नारायण प्रसाद शर्मा की। लीजिए सुनिए।

अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में साधना गोरे का राग सलाग बराली तोड़ी में शास्त्रीय गायन, तबला संगत थी नारायण प्रसाद शर्मा की। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।

0: प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जिलेवासियों को धूप और लू से बचाव करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से शीतल पेयजल का उपयोग करने, धूप में नहीं निकलने, धूप से बचाव के लिए चश्मे और छाते का उपयोग करने को कहा है। जिले में इन दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन तालाबों, बावड़ियों की साफ सफाई, पुराने तालाबों का गहरीकरण, सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई की जा रही है, ताकि आने वाली बारिश के पहले बेहतर जल प्रबंधन हो सके। निजी समाजसेवी संस्थाएं भी जल प्रबंधन के कार्य में सहभागी बनी हुई है। छतरपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमा शिवाय अर्जरिया ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में एक एक काम जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनिश्चित किया गया है। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य जारी है। इसी क्रम में गौरिहार तहसील में सबसे पहले HLB का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, चांदला निकायों में भी शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी पार जायसवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगणकों, सुपरवाइजर्स, ग्रामीण अधिकारी, SDM सहित संपूर्ण टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी और समर्पण से ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। SDM बलबीर रवन ने प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर छतरपुर जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 16 मई से 10 दिन तक संचालित होने वाले कृषि रथ को छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO नमा शिवाय, अर्जरिया उप संचालक कृषि अनिल मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1,37,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिला नागरिक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी ने बताया कि जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें किसानों के लिए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी। शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदी 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। किसानों को 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कोताही ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण टीम में गठित की गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार जायसवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी, आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म मुन्ना भाई MBBS से आवाजें हैं श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। राहत इंदौरी का गीत है और धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने। पसंद क्या है आप सभी श्रोता साथियों ने? नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, इसी गीत को सुनना चाहे। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन ने। सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋषु, ऋतु, मुकेश और जगता। आप सब सुनिए श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में फिल्म मुन्ना भाई MBBS का ये गीत।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे का ये गीत, लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत से सवारा है राहुल शर्मा ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिक्षा संधू, प्रीतिशा संधू और मैक्स। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय ने। बघेरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। बागड़ी मोहल्ला रतलाई झालावाड़ राजस्थान से इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोमा, फुंदीबाई बागड़ी ने। सुदामा नगर से इसी गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागड़ी और प्रभुलाल बागड़ी ने। आप सब सुनिए फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे का ये गीत लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश की अगली प्रस्तुति के रूप में फिल्म 1-2 का 4 का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने।

बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर। नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर, कुमारी ध्वनि गवहाणकर। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है उमरखेड़ महाराष्ट्र से श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर ने। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और संघई परिवार के सभी सदस्य। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। हरदोई लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़े शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। आप सब सुनिए फिल्म 1-2 का 4 का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में गांव लोहगढ़ जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह,

पर भी बेबी हिमाक्षी ने। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और कनेरा मोहल्ला पटियाला से इसी गीत को सुनना चाह है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने। आप सब सुनिए फिल्म राज 3 का ये गीत जावेद अली की आवाज़ में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता।

इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, मास्टर समरराज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, और गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म आक्रोश का गीत जावेद अली की आवाज़ में, संगीत निर्देशन है प्रीतम का। इसी गीत को सुनना चाह है ग्राम दूल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। आप सब सुनिए फिल्म आक्रोश का गीत जावेद अली की आवाज़ में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का गीत श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की आवाजों में, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा महाराष्ट्र से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। पंडरपुर महाराष्ट्र से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, जमीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्य।

जिला नांदेड़, एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। पदमपुर जिला गंगानगर से राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आप सब सुनिए फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का ये गीत श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की आवाजों में।

0: रिश्तों की बात करना चाह रहे हैं। हाँ,
1: जो आज हमारा जो यकीन इस चीजों से होना चाहिए, तब जो मनोभाव हमारा, जो मानवता है, जो समाज है, उस परिवर्तित के रूप में जो हमारा है उसको मानने पर ही फरिश्ते माने जा सकते।
0: कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
1: यही बताता रहा हूं मैं बिल्कुल, कि आदमी जो चीज अपने अच्छे कर्मों का फल अगर हम सही आत्मविश्वास के साथ अगर करते हैं, या वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी समाज का हो, या किसी भी व्यक्तित्व के भाव को अच्छी तरह से अगर उसको व्यक्तित करते हैं तो वो फरिश्ते के रूप में चलाएगा। ये अच्छा काम नहीं कर रहा है और जो मान लो कि हम उसे मुझे फरिश्ते कहो तो ही नहीं हो सकता।
0: जी, फरिश्ते जो हैं वो नेक दिल होते हैं, नेक काम करते हैं और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं।
1: वो कटु शब्दों से बिल्कुल दूर रहते हैं।
0: जी जी, चलिए, आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है फरिश्ते की, और उम्मीद करते हैं कि ये फरिश्ते की बातें जो आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो आगे चढ़कर कुछ और भी रूप ले, और बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियाँ भी मिलें और लोगों के सुझाव भी मिलें।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत अच्छा मैम साहब, बहुत अच्छी आपने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा
0: जी।
1: और इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है मैडम इससे।
0: जी,
1: आदमी की नकारात्मक जो टिप्पणियां जो होती है ना,
0: हाँ,
1: उसके भाव वो घर कर जाती है।
0: जी,
1: ये कार्यक्रम जो होता है वो प्रशंसक जो आप और जो होते हैं,
0: हाँ,
1: आपके शब्दों में जो भाव आते हैं
0: जी,
1: वो हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं, और हम इसी से आपसे सुन के,
0: हाँ,
1: हम भी इसे अच्छे लिखते हैं और सुनते हैं, और कार्यक्रम में फोन लगता है तो हमें भी शब्दों में भाव पैदा होता है।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे
1: मैडम।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नियाज मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: जी जी,
0: नमस्ते।
1: दोस्ताना गाना का गाना है मैम।
0: सर, यहाँ
1: रहे ये दोस्त हमारा।
0: जी, यहाँ पर क्या गाने हम अपनी पसंद के सुनाते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम डाल सके।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का ही गाना सुना दीजिए मैम।
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा
0: जी
1: आपको कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। परिवार को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद अग्रिम
0: जी,
1: और आप
0: आपको भी,
1: हम सब मिलकर रहे
0: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: जी मैडम।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी मैडम जी।
0: आपको कभी समझ में आया कि ये दोस्त नहीं होते तो आज मेरा ये काम रुक जाता या ये काम नहीं हो पाता?
1: जी
0: ऐसा कभी हुआ तो
1: ऐसा हुआ है सर मैडम जी।
0: बताइए वो वाकया क्या था।
1: जी मैडम जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। जी कल के लिए थे, गया जी गए थे हम
0: हाँ
1: तो अपने पिताजी की वो कराने के लिए पिंडदान। तो
0: हाँ
1: हमें बहुत समस्या आ गई थी, हमारा पर्स सब चला गया था, बैग भी चला गया था।
0: हाँ
1: तो हमारे साथ में एक मित्र गया था, हमारे साथ
0: हाँ
1: में, तो
0: हाँ
1: उसने हमारे खाने पीने से लेकर और पूरी व्यवस्था, जब तक हम घर नहीं लौटे आए,
0: हाँ
1: और हमारे साथ में खड़ो ही रहो भाई, तुम्हें चाय तो नहीं पीने क्या है?
0: हाँ
1: लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए मैडम जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही दोस्त हमेशा मिले, सभी को मिले। एक बार आपका परिचय फिर दे दें।
1: जी मैडम जी मैडम, हम अपने जिला दमोह से बोल रहे हैं,
0: हाँ
1: गिरधारी सेन नाम है हमारा। जी मैडम
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा गिरधारी सेन जी आपसे बात करके, बहुत
1: जी।
0: शुक्रिया।

0: आकाशवाणी भोपाल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का ये प्रसारण है
0: जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी कैसे हैं राजेश नेवा जी?
0: बढ़िया है, ठीक ठाक है।
1: जी जी
0: और
1: चलिए,
0: आपके लगभग प्रसारण बहुत पुराना श्रोता हूँ, इसलिए बहुत पुराने कार्यक्रमों से भी जुड़ाव रहा है,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वर्तमान में जो शानदार कार्यक्रम आ रहे हैं उनसे भी जुड़ाव है और
1: जी
0: हमेशा रहेगा।
1: जी जी जी आज बात आपके गीत हमारे में, हम फरिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई घटना जिसमें कभी आपको कोई व्यक्ति जो है वो फरिश्ते के रूप में मिला हो?
0: अच्छा, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय की बात है, किसी कारणवश एक पेपर मेरा मिस हो गया था।
1: जी
0: तो एक चूंकि सामान्य क्लास थी, तो हमारी क्लास के कक्षा शिक्षक थे,
1: जी
0: तो उन्होंने जब जांच की तो हमारा पेपर नहीं मिला। तो वो फिर घर पर आए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत होना, आप पेपर बाद में भी दे सकते हो। तो मेरी बहुत सी बड़ी परेशानी एक बच गई उस समय। तो मैंने कहा, ये इस तरह के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से दूसरों के काम आते हैं और परेशानियां दूर करते हैं।
1: यानी आपके जीवन में शिक्षक जो हैं वो एक फरिश्ते के
0: जी
1: रूप में आए थे?
0: जी मैं चूंकि स्वयं शिक्षक हूँ
1: जी
0: और एक छोटा सा कार्टूनिस्ट भी हूँ,
1: जी
0: तो शिक्षकों का एक अलग मेरे मन में आदर सम्मान
1: जी
0: हमेशा है और रहेगा।
1: जी शिक्षक हमेशा आदरणीय होते हैं क्योंकि वो जीवन
0: जी
1: के लिए
0: जी
1: वो आधारशिला बनाते हैं। माता
0: जी
1: पिता
0: बिल्कुल,
1: तो पहली पाठशाला होते हैं, प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है, लेकिन
0: हाँ बिल्कुल, जीवन उन्हीं से शुरू होता है।
1: जी
0: सही
1: बिल्कुल
0: जो मायने में जीवन है
1: जी,
0: वही जिंदगी की सही राह दिखाते हैं,

0: और हम आगे चल के प्रगति कर सकते हैं नीचे मार्गदर्शन में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन का साक्षात्कार जो है वो हमारे शिक्षक ही हमें करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा राजेश नेमा जी आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं आप हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़ा करेंगे और भविष्य में भी आप हमसे बातें करेंगे।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, किससे बातें कर रहे हैं हम, परिचय दीजिए।
0: इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, बहुत स्वागत है आपका
0: जी।
1: कैसी हैं?
0: अच्छी हूँ मैम।
1: अच्छा जीनत परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए कोई फरिश्ता बन के आया है कभी? कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आपको वो इंसान जो है वो फरिश्ते के रूप में नजर आया हो?
0: हाँ वैसे तो हुआ है ऐसा।
1: जी बताएं।
0: जैसे कुछ भी जरूरत पड़ती तो कोई इंसान है जो फरिश्ता बन के आ जाता है।
1: तो आपके जीवन में वो फरिश्ता कौन है?
0: फरिश्ता मेरे हस्बैंड ही है।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा। जीवन साथी जो है वो सही मायने में आपके सारथी होते हैं
0: जी।
1: और तो बताइए आप किस तरीके से मानती हैं कि जीवन साथी जो है आपके वो आपके लिए फरिश्ता है?
0: बस कुछ भी काम होता है तो कर देते हैं।
1: और
0: जैसे कहीं जाना होता है तो मना नहीं है, कहीं पे भी घूमो फिरो। घर के कामों में हेल्प कराते हैं।
1: हाँ, इसमें बतौर फरिश्ता आपको क्या समझ में आया जीनत जी? जैसे कि हम कहते हैं कि जिंदगी में किसी ने यदि पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके भाई हों, दोस्त हों, जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया हो, इस प्रकार की कोई बात हो तो वो बताएं आप।
0: हाँ जैसे कहीं अर्जेंट कहीं जाना रहता है तो एकदम वो ड्यूटी भी छोड़ के मतलब आ जाते हैं छोड़ने मेरे को।
1: हाँ हाँ
0: कहीं जाना पड़ता है अर्जेंट तो।
1: अच्छा अच्छा, तो चलिए हम मानते हैं कि आपके जीवन साथी जो हैं वही आपके लिए फरिश्ते हैं
0: जी।
1: चलिए आगे बढ़ने के लिए
0: सपोर्ट करते हैं ना, सबके लिए करते हैं।
1: चलिए जीनत परवीन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा
0: जी। शुक्रिया मैम
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार दीदी
1: जी, आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं ग्राम गुरुजी कला से राजकुमार लखेरा बोल रहा हूँ।
1: जी लखेरा जी, आपका बहुत स्वागत है।
0: जी, और कैसी हैं मैडम जी?
1: जी हम तो अच्छे हैं। लखेरा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जीवन में आपके लिए फरिश्ता क्या है, या जीवन में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति कभी आया हो जो आपके लिए फरिश्ते के तौर पर साबित हुआ हो?
0: जी वैसे मैडम जी, वैसे तो
1: कभी किसी ने बहुत आगे बढ़ के मदद की हो, कभी परेशानी में घिरे हुए हो आप और आपकी किसी ने बहुत अच्छे से मदद करी हो, भगवान के रूप में खड़ा हो गया हो आपके लिए?
0: ये ऐसा वाक्य आप तो नहीं आए मैडम जी। बाकी ये रहता कि माता पिता यदि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार दे के और उनको संपन्न बना रहे हैं।
1: माता पिता आपके लिए किस प्रकार से फरिश्ते साबित हुए हैं ये बताइए।
0: यही कि हर समय पे मतलब मदद करते रहते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आ पाती, यदि कोई आती है तो वो मतलब है उसका निराकरण करते हैं।
1: हाँ,
0: कभी कोई नहीं आ पाती समस्या, वैसे उनके उसमें रह
1: हाँ।
0: मदद करते रहते हैं
1: माता पिता।
0: और माता पिता, और कभी ऐसे मौका आया तो दोस्त भाई, अगर यदि अच्छे हैं तो दोस्त भाई भी मदद करते हैं।
1: हाँ, तो दोस्त भाई भी तो वो संस्कार लेते हैं जब माँ बाप से, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं वो आपके लिए, मदद के लिए।
0: जी मैडम।
1: चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके कि माता पिता के संस्कार के साथ में भी इंसान जो है वो फरिश्ते सा काम करता है।
0: जी
1: जी लखीरा साहब, आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।

0: चलिए आपसे भागचंद साहू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए सैनिक क्या मायने रखते हैं और सैनिक को आप फरिश्ते के तौर पर कैसे देखते हैं?
1: सैनिक तो दीदी ऐसा है, देखो देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बिना कुछ नहीं हो सकता, देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है।
0: हाँ, और सैनिकों के लिए और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: और दीदी हम तो देखो पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम।
0: हाँ
1: हाँ, उसी में लगे रहते हैं और कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी चलिए, सैनिक आज सीमा पर हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं और निश्चिंत हैं कि
1: थोड़ी अपन सुरक्षित हो सका।
0: जी निश्चिंत है कि हमारा देश सुरक्षित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
0: चलिए भाग्यचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: जी मैम जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: आपका नीम है सोता कमलेश कार बात कर रहा हूँ, जिला नरसिंहपुर के ग्राम करकबेल से। सकुशल है मैम जी? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी
1: जी कमलेश कहार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए फरिश्ता कौन है, कोई वाक्य बताइए। आ रही है
0: सबसे पहले फरिश्ते की बात करें तो सबका फरिश्ता तो मैं कह सकता हूँ, हम जैसे मानते हैं भगवान।
1: जी जी जी,
0: उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जो सांस ले रहे हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी,
1: हाँ हाँ,
0: इन सभी के अस्तित्व के कारण ही हमारा अस्तित्व है।
1: जी जी जी,
0: रही दूसरी बात फरिश्ते की, जो जीता जागता रहता है, जो सामने दिखता है बिल्कुल,
1: हाँ,
0: मेरे घर में मेरा परिवार है।
1: जी जी जी,
0: और रही दूसरी बात तो मेरे ग्राहक बंधु है, चाय नाश्ते की दुकान है मैम जी, तो ग्राहक बंधु जो होते वो मेरे लिए फरिश्ते का काम करते, मेरे लिए कह सकते हैं जीवन यापन के लिए जो माध्यम होता है उसके तहत वो उपस्थित होते हैं, और मेरा सहयोग के माध्यम से मेरी दुकान चलती है।
1: हाँ।
0: तो इस प्रकार से दो प्रकार के मेरे फरिश्ते हैं। और तो तीसरी मैम जी एक बात और कहेंगे कि
1: जी,
0: दोस्त हैं मेरे कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जो सामने तो देखते हैं लेकिन मदद मैम जी वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी हमेशा करते ही रहते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात कही आज आपसे, बातें करके बहुत अच्छा लगा कमलेश कहार जी। आपने पंचतत्व की बात कही है, परिवार की बात कही है, और ग्राहक की बात कही है। वाकई में आपके जीवन के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपको और आपकी टीम को।
1: जी जी।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी मैम नमस्कार, अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ मैम, कटनी मध्य प्रदेश से, ग्राम डिठवारा। जी मैम आज कौन सा विषय रखा हुआ मैम?
1: जी आज हम बात कर रहे हैं फरिश्ते की। जो कोई भी आपके जिंदगी में आपके लिए कभी फरिश्ते के रूप में उपस्थित हुआ हो या आप मानते हैं कि वो फरिश्ते हैं तो वो बताएं कुछ।
0: सबसे पहले तो मेरे माता पिता फरिश्ते हैं मैम, जिन्होंने मेरे को धरती पे लाया, उन्होंने इतना सब कुछ शिक्षा दी, बचपन में मेरे को शिक्षा दी। और दूसरे फरिश्ते हैं मैम मेरे गुरु जी, जिन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, उन्होंने इतना सहयोग किया।
1: जी जी
0: आज आदमी उस जगह पे है।
1: जी
0: जी मैम। और तीसरी मैम जीवन संगिनी है मैम, पत्नी
1: जी,
0: जो हमेशा साथ साथ निभाती हैं।
1: जी जी
0: उससे बड़े फरिश्ता और कौन हो सकता है।
1: चलिए कोई और वाक्य बताना भी चाहते हैं कुछ तो बताइए कि किस प्रकार से कभी माता पिता और गुरु और जीवन संगनी की आपने बात करी है।
0: जी जी जी मैम, मैं जब भी क्या कुछ थोड़ा परेशान होता हूँ, कुछ भी रहता हूँ, तो माता पिता से अपनी बात मैं शेयर करता हूँ और वो मुझे बहुत ढंग से गाइडलाइन देते हैं।
1: हाँ।
0: और मुझे सफलता प्राप्त होती है, तो मेरे लिए माता पिता सर्वोपरि है मैम।
1: जी
0: जी जी, और उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ, रोज सुबह उठ के दोनों के चरण स्पर्श करता हूँ।
1: जी
0: यही मेरी दिनचर्या है।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा अमर सिंह जी, माता
0: जी
1: पिता
0: जी

0: आपके लिए जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते आपके जीवन में हमेशा बने रहें, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही कामना करते हैं
1: जी मैम
0: जी। धन्यवाद।

ये फरिश्ते हमारी ज़िंदगी में कई बार कई रूप में सामने आते हैं। ज़रूरत है ऐसे एहसास को समझने की, ऐसे जज्बातों को समझने की और साथ ही ऐसी ऊर्जा को समझने की जिससे बिगड़ता काम सवर जाए, जो अनहोनी को टाल जाए और जो आपको कृतज्ञ कर जाए।

0: जीवन में फरिश्ते ये मूक प्रकृति भी है, ये वसुधा है जिसे हमने संसाधनों से सराबोर किया है। हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमने बात की अपने जीवन के फरिश्तों की। आप सभी श्रोताओं के विचार जानकर हमें खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत। हमारे ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। डॉ. यादव परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है और भारतीय अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम का कल भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। वहीं इससे पहले भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है। किशोर कुमार की आवाज है, अलका याग्निक ने साथ दिया है, माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है अमित रैकवार, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवपालिका, पारस और संदीप ने। ये पत्र हमें मिला है बैतूल से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म पिघलता आसमान से ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं मर्यादा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। मन्नू, मंजू, पिंकी, ऋषिका, रवि, स्वीटी, मनोज, कामिनी, इन्होंने पत्र लिखा है भोपाल से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश वर्मा के साथ ऋषि वर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सबके पसंद पर मर्यादा फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं खंडवा के श्रोताओं की पसंद पर गीत। पसंद है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त पंचौलिया परिवार की। फिल्म का नाम है काजल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत है रवि का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जीएम दुरानी और साथियों की है। विनोद का लिखा ये गीत है, संगीत अजीज़ कश्मीरी का, पसंद आप सब श्रोताओं की। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से मयंक और राशि, पंकज और साधना इस गीत को पसंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक थी लड़की फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरूह के शब्द हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू और डब्बू ने ये गीत सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र। आज सुनिए इसकी आठवीं कड़ी।

सभी श्रोतागण, दादा दादी एवं नाना नानियों को विशेष प्रणाम। आप सबको पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियां जरूर भाती होंगी। अभी तो ढेर सारी कहानियां और भी हैं। पिछली कथा में हमने सुना, लघु पतनक नामक कौवे ने देखा कि किस प्रकार चित्रग्रीव अपने साथियों को जाल में फंसा देखकर घबराया नहीं, बल्कि उन्हें हौसला दिया। सब ने मिलकर जाल को उड़ा लिया। बहेलिया हार कर लौट गया। लघु पतनक भी उनके साथ उड़ चला। फिर उसने देखा कि हिरण्यक नामक चूहे ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। लघु पतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। पहले तो हिरण्यक तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर लघु पतनक के तर्क के सामने उसने हार मान ली। वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन लघु पतनक ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। हिरण्यक को लेकर वो दक्षिण की ओर अपने मित्र मंथरक कछुए के पास पहुंच गया। मंथरक ने उनका बहुत स्वागत किया, परंतु मंथरक ने हिरण्यक से अपनी पुरानी जगह को छोड़ने का कारण पूछा। हिरण्यक ने बताया, अपने भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इस संदर्भ में उसने छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। एक वणिक पुत्र की कथा भी सुनाई, जो हमेशा अपने भाग्य पर ही विश्वास करता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। संयोगवश उसका मिलन राजकन्या से हो गया, लेकिन सच्चाई ज्ञात होने पर राजकन्या ने उसे निकाल दिया तो प्राप्त व्यर्थ नगर की ओर चल पड़ा। वहीं से एक बारात निकल रही थी, वो उसमें शामिल हो गया। अब आगे।

0: क्या शानदार बारात है। लगता है जैसे किसी बड़े आदमी के घर जा रही है। अच्छा, ये तो नगर सेठ की बेटी की शादी है। अरे ये कोलाहल कैसा, लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे ये तो एक मदमत हाथी महावत से छूट गया है, सबको रौंदता हुआ जा रहा है। हे प्रभु इनकी रक्षा करो। ये दुल्हन बेचारी अकेली खड़ी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। सुनिए, आप डरे नहीं, अब मैं आपका रक्षक हूं।
1: मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आप नहीं जानते मैं कितनी डरी हुई थी, अब मुझे थोड़ी राहत मिली।
0: मेरा हाथ थाम लो कन्या, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा।
1: आपने आज मुझे मृत्यु से बचाया है, इसलिए अब आपको छोड़कर मेरी जीवित दशा में कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
0: भाग्य में लिखी वस्तु मिल ही जाती है। हाँ, मनुष्य के

0: भाग्य में लिखी वस्तु उसे मिल ही जाती है।
1: अगली सुबह राजा ने पूरा वृतांत सुना। अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों एवं दास दासियों से युक्त करके 1000 गांवों के साथ अत्यंत आनंद के साथ प्राप्त वैध को सौंप दिया। राजा ने उसे युवराज का सम्मान दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को भाग्य का लिखा मिल ही जाता है। और इसी कारण मैं लघु पत्नक के साथ यहाँ आ गया हूँ।
2: आप सबका इस तालाब के किनारे स्वागत है। आपका जो धन नष्ट हुआ उसके लिए चिंतित ना हो। भाग्य में यदि उपभोग का सुख नहीं है तो वह संभव नहीं होता। जैसे सौमिलक धन खो देता था।
1: सौमिलक धन खो देता था, वो कैसे मंत्रक?
2: तो सुनो, एक नगर में सौमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अनेक प्रकार के रंगों और चित्रकारियों से युक्त रेशमी तथा राजाओं के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का निर्माण करता था, परंतु
3: प्रिय, मैं अनेक प्रकार के चित्रकारियों से युक्त रेशमी वस्त्रों के निर्माण में निपुण होने पर भी उतना धन नहीं कमा पाता, क्यों?
4: सही कहते हैं आप। दूसरे जुलाहे जो केवल मोटे वस्त्रों के निर्माण में ही कुशल थे, वे हमसे अधिक समृद्ध हैं।
3: मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे रास नहीं आ रही। मुझे दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहिए।
4: हे स्वामी, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। विदेश जाने पर धन लाभ ही हो, ये सारी मिथ्या बातें हैं। मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में चला जाए, अथवा पृथ्वी के ही छोर तक चला जाए, किंतु जो वस्तु पहले नहीं मिली वो कभी मिलेगी भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पर कोई उद्योग।
3: प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल मनोरथ मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं विदेश अवश्य जाऊंगा।
5: ऐसा निश्चय करके सोमिलक ने वर्धमान नामक नगर में जाकर 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत की और 300 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर लौटा। रास्ते में एक जंगल आया, वहां विश्राम के लिए रुका, परंतु उसका धन चोरी हो गया। वो पुनः शहर गया, धन कमाया, पर अत्यधिक सावधानी के बावजूद उसका धन फिर चोरी हो गया। चौथी बार उसने देखा, उसकी ओर देखकर 2 विचित्र आकृति के पुरुष कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना।

0: हे कर्ता, क्या तुम भली भांति नहीं जानते हो कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन नहीं है? फिर भी आपने इसको 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी?
1: हे कर्मन, उद्यमी पुरुषों को उनका अंश देय होता ही है, पर इसके प्रारब्ध का अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मुझे व्यर्थ ही उपालंब दे रहे हो।
2: नहीं, मेरे श्रम के फल को कोई नहीं छीन सकता। मैं गठरी को संभाल कर रख लेता हूं। अरे ये क्या, अरे ये गठरी तो फिर खाली है। हाय हाय हाय हाय, अब क्या होगा।

0: मेरे निर्धन रहकर जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? हाय हाय हाय हाय, मैं इस वट वृक्ष की शाखा में खुद को मान कर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, सोमिलक, इस प्रकार का साहस न करो। तुम्हारे धन को चुराने वाला मैं हूं। भोजन और वस्त्र से अधिक धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर लौट जाओ, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हां, चाहो तो कोई और वर मांग लो।
0: सच? यदि ऐसा है तो मुझे बहुत सा धन दे दो।
1: पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे।
0: यद्यपि धन मेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी मेरे पास धन होना चाहिए। धनी व्यक्ति की लोग सेवा करते हैं।
1: कैसे?
0: किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नामक एक सांड रहता था। मद के गर्व से उसने अपने समूह का साथ छोड़ दिया था और एकाकी नदियों के किनारे उगी हुई मरकत मणि के समान हरी हरी कोमल घास को चरते हुए नदियों के तट को अपने सींग से गिराया करता था। इस प्रकार स्वच्छंद विचरण करते हुए वो धीरे धीरे जंगली हो गया और वन में निवास करने लगा। उसी वन में प्रलोभक नाम का एक श्रृगाल भी रहता था। एक दिन वो श्रृगाल अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इसी बीच तीक्ष्ण विषाण नाम का वो सांड जल पीने के लिए नदी तट पर आ गया। उसके लटकते हुए वृहत मांसल अंशों को देखकर श्रृगाली ने कहा,
2: स्वामी देखो, इस वृषभ पर मांस के टुकड़े जिस प्रकार से लटके हुए हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि कुछ ही पलों में ये गिर जाएंगे। आपको इस वृषभ का अनुगमन करना चाहिए।
3: प्रिये, कौन जानता है ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवा रही हो। यहां तुम्हारे साथ रहकर मैं जल पीने के लिए आने वाले चूहों को पकड़कर खाया करूंगा। मेरे विचार से सांड के पीछे भागना उचित नहीं।
2: तुम उद्यमी नहीं हो। थोड़ा बहुत जो पा जाते हो उसी से संतोष कर लेते हो। कायर और आलसी पुरुष ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं चूहों का मांस खाते खाते ऊब चुकी हूँ। अरे देखो देखो, मांस के ये टुकड़े गिरने ही वाले हैं। तुम्हें मेरी बात टालना नहीं चाहिए।

0: पत्नी की बात को श्रीगाल टाल नहीं पाया। वृषभ के पीछे घूमते हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, किंतु मांसपिंड नहीं गिरे। 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करके वो श्रीगाल लौट आया। उसे लगा वो मांसपिंड कभी नहीं गिरेंगे।
1: देखो सोमिलक, यदि तुम्हें धन प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरी बात मानो। तुम वर्धमानपुर जाओ, वहां 2 वणिक पुत्र निवास करते हैं। हाँ, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। दोनों के स्वभाव को देखो, फिर एक की प्रकृति का वर मुझसे मांग लेना।
2: ये कहकर वो पुरुष अंतर्धान हो गया। सोमिलक उस नगर में जाकर गुप्त धन के घर पहुंचा। उसे देखकर गुप्त धन स्त्री तथा बच्चों को फटकारने लगा। उनकी उपेक्षा की चिंता किए बिना सोमिलक उनके घर में प्रवेश कर बैठ गया। भोजन का समय हो जाने पर अनिच्छा से गुप्त धन ने थोड़ा सा भोजन सोमिलक को भी दे दिया। सोमिलक वहीं सो गया। रात में उसने देखा वही दोनों पुरुष वहां बातें कर रहे थे।
1: हे कर्ता, क्या आपने इस गुप्त धन के भाग्य में कोई अतिरिक्त व्यय नियत किया था जो इसने सोमिलक को भोजन के लिए दिया? ये तो अनुचित है।
3: हे कर्मन, इसमें मेरा कोई योग नहीं। पुरुष को उसके लाभ तथा हानि को प्रदान कर देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दिए हुए फल का परिणाम आपके अधीन है।

0: अगले दिन उठकर सौमिलक ने देखा गुप्तधन आंत्रशोथ से पीड़ित है। इस कारण उस दिन गुप्तधन ने भोजन नहीं किया। फिर उस घर से निकलकर सौमिलक उपभुक्त धन के घर गया, जहां उसका विशेष स्वागत और सम्मान हुआ। उपभुक्त धन द्वारा प्रदत्त वस्त्र और भोजन से सम्मानित होकर सौमिलक एक भव्य शैया पर सो गया। रात्रि के समय उसने पुनः उन दोनों पुरुषों को देखा।
1: हे कर्ता, इसने सौमिलक के आतिथ्य में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया। आप बतलाइए इसके ऋण का भुगतान कैसे होगा।
2: हे कर्मन, जो मैंने किया है वह मेरा कर्तव्य था। इसका परिणाम अब आपके हाथ में है।
0: प्रातः होते ही एक राज कर्मचारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और उपभोक्त धन के हाथ में दे दिया। ये घटना देखकर सौमिलक ने मन में सोचा कि संचय रहित उपभोक्त धन ही श्रेष्ठ है।
3: धनोपार्जन की सार्थकता तो तभी होती है जब व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दान आदि से दूसरों को उपकृत करे। हे विधाता पुरुष, मुझे उपभुक्त धन की प्रकृति चाहिए।
0: इस कथा को सुनाकर मंथरक ने कहा,
4: मित्र हिरण्य, भोग को प्रधान मानकर तुम्हें धनहानि के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन के विद्यमान रहने पर भी उसे अविद्यमान ही मानना पड़ता है। धन को पाकर दान देना चाहिए अथवा उपभोग में लाना चाहिए, कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। दान के समान कोई दूसरी निधि नहीं होती। भगवान शिव के पास धन के नाम पर केवल वृषभ नंदी हैं, फिर भी वो परमेश्वर कहलाते हैं। तुम उस खोए हुए धन की चिंता छोड़ दो मित्र।
5: हाँ मित्र हिरण्यक, मंत्रक की पुरुषवाणी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। प्रिय बोलने वाले तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय और उचित बोलने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं।
6: मित्र मंथरक, मुझे लगता है आपका कथन सत्य है। अप्रिय होते हुए भी जो हितकारी बातों को कहते हैं वे ही तो वास्तविक मित्र होते हैं।
5: मित्रों देखो, एक हिरण इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। आप सब छुप जाएं, हो सकता है इसके पीछे कोई ब्याद आ रहा हो।
7: हाँ मित्र लघुवत तक, ये मृग बड़ा ही कातर लग रहा है।
5: हाँ।
7: चलो चलो उसके पास चलते हैं।
5: हाँ चलो।
7: मृगराज, आप भयभीत प्रतीत होते हैं।
8: जी जी, मेरा नाम चित्रांग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। सचमुच मैं भय संत्रस्त हूँ और बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूँ। आप लोग मुझे अपनी शरण में लेकर कोई ऐसा स्थान बताएंगे जहाँ वो व्याध ना पहुँच सके।
5: मित्र, वो बहेलिया पर्याप्त मांस पिंडों को लेकर अपने घर चला गया है।
8: अच्छा,
5: अब कोई भय नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं।
0: उस दिन से चारों कौवा, कछुआ, चूहा और मृग तालाब के किनारे मनोविनोद करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग नहीं आया, सभी चिंतित हो गए।
6: मित्रों, क्या बात है, आज मित्र चित्रांग नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
5: शेर चीते के हाथ तो नहीं लग गया, या फिर किसी शिकारी के जाल में?
7: मित्र लघुपतनक, हिरण्यक और मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। हम तेज नहीं चल सकते, इसलिए तुम जाकर उसे खोजने का प्रयास करो।

लघु पतनक चित्रांग की खोज में चल दिया। कुछ दूरी पर उसने चित्रांग को बहेलिए के कूट पाश में बंधा हुआ देखा।

0: भद्र, ये तुम्हारी क्या दशा है? ये कैसे हो गया?
1: मित्र, अब तो मेरा मृत्युकाल आ गया है। अच्छा हुआ मित्र आप आ गए। प्राणांत काल में मित्र का दर्शन सुखकारक होता है। अगर मैंने कभी भी कोई अप्रिय वचन कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना मित्र।
0: भद्र, हम लोगों के रहते आपको इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हिरण्यक को लेकर आता हूं, आप आशान्वित रहें।
1: अच्छा।
0: अरे मित्र, ये अच्छा नहीं हुआ।
2: क्यों, क्या हुआ? क्या वहां बहेलिया आ गया?
0: नहीं, परंतु ये मंत्रक भी यहाँ चला आ रहा है। अरे ये उचित नहीं है। अगर अभी वो व्याध आ गया मैं तो आकाश में उड़ जाऊंगा। तुम विवरण में घुसकर आत्मरक्षा कर लोगे, चित्रांग भी तेजी से भाग जाएगा, परंतु ये मंत्रक धीरे धीरे चलकर अपने आप को कैसे बचा पाएगा?
3: क्या करूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया। मित्र के विपत्ति की सूचना के बाद मैं कैसे रहता?
4: अभी वो चारों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही हुआ जिसका डर था, व्याध आ गया। सभी बच गए पर मंत्रक कछुआ व्याध की पकड़ में आ गया। उसे धनुष की नोक पर टांग कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तीनों ने एक उपाय किया। वो चित्रांग बहेलिए के मार्ग में जाकर तालाब के किनारे निर्जीव भूमि पर लेट गया। लघुपतनक उसके सिर पर बैठ गया। उसे देख व्याध मंत्रक को वहीं छोड़कर हिरण लेने दौड़ पड़ा। इसी बीच हिरण्यक ने मंत्रक के पाश को काट दिया। मंत्रक वहां से भाग निकला। बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से वो चारों मित्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारवानों को परस्पर मित्रता रखना चाहिए और मित्र के लिए सदैव प्रेम भाव रखना चाहिए। श्रोतागण, यहीं पर हमारा द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम आपको काकोलुकियम की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने पंचतंत्र की 8वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, और 1:45 पर सुना जा सकेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होंगे। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्य समूह की बैठक को कल वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की आज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। वहीं मौसम में प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो में कल सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज अहमदाबाद में शाम 7:30 से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 1:00। अब सुनिए महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान है।

आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रसारित आज के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, आज हम आपसे हमारे समाज, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। सखियों, हमारा भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है, लेकिन हमारे दिलों को जोड़ने वाली संस्कृति कभी नहीं बदलती है। इसी सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने और संवाद के माध्यम से विकास का संदेश सभी तक पहुँचे, इसी उद्देश्य को

लेकर प्रतिवर्ष 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। सखियों, यह दिन हमें सिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियाँ, परंपराएं और विचारधारा किसी भी समाज की शक्ति होती हैं, कमजोरी नहीं। जब संवाद होता

तब एक शक्तिशाली समाज का निर्माण होता है। और जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, सम्मान देते हैं और आपस में बातचीत करके, एक दूसरे में जब लोग अधिक व्यस्त जीवन जीते हैं तो एक दूसरे से मिलना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में गलतफहमी होना संभव है। सखियों, तब संवाद ही एक ऐसा माध्यम होता है जो गलतफहमी को दूर करके दिलों को जोड़ता है। और सखियों, यही संवाद हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे भारत में तो ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। सखियों, जब अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं तब समाज में नई संभावनाएं, नए विचारों का जन्म होता है। सखियों, संवाद और संस्कृति में हम बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक महिला ही परिवार को संस्कार देती है, घरों में मनाए जाने वाले तीज त्यौहार परंपराओं को जीवित रखती है। घर में बोली जाने वाली भाषा से लेकर रीति रिवाजों तक, हर संस्कृति की पाठशाला एक माँ की गोद ही तो होती है। सखियों, हम बहनें ही परिवारों को जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम बखूबी करती हैं, समाज को संवेदनशील बनाती हैं, भावनात्मक रिश्तों को बढ़ाती हैं और समाज में विकास की दिशा तय करती हैं। सखियों, अलग अलग संस्कृति में बसी एकता की भावना को आगे बढ़ाएं, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग सुर मिलकर एक मधुर संगीत तैयार हो जाता है। और संगीत की इसी मधुरता का एहसास करते हैं इस गीत को सुनकर, जिसे हमने लिया है फिल्म कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस गीत को सुरों की माला में पिरोया है के हरिहरन ने।

0: कहे।
1: सखियों, जब हम संवाद और विकास की बात करते हैं तो संवाद का एक माध्यम वार्ता भी है, जिसे आज के कार्यक्रम में घरेलू हिंसा अधिनियम विषय के साथ शामिल किया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मयूर शिखा। तो सखियों, सुनते हैं ये वार्ता, विषय है घरेलू हिंसा अधिनियम।
2: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार में राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सम्मिलित है। इस लाइफ में

भी डिग्निटी है। महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा उनके गरिमा के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने वाली है। अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए सन 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में लागू हो गया। कानून का प्रभाव उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे इस पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आज हम अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है, पीड़ित या व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट जिसे पीड़ा पहुंचाने वाला कहते हैं वह कौन है, पीड़िता की सहायता करने वाली एजेंसी सेवा प्रदाता कौन है और उसके क्या कार्य हैं, प्रोटेक्शन अधिकारी या संरक्षण अधिकारी क्या है, इनकी क्या भूमिका है, ये पीड़ित को राहत दिलवाने में क्या भूमिका निभाते हैं, साथ ही न्यायालय की क्या भूमिका है। पहले बिंदु पर हम ध्यान देते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य आते हैं जो कि अधिनियम की धारा 3 एवं नियम के अनुसार बतलाए गए हैं। शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत मारपीट, थप्पड़, ठोकर, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना आता है। इसी प्रकार लैंगिक हिंसा में प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का कार्य, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अश्लील साहित्य, तस्वीर, सामग्री देखने के लिए विवश करना, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार। मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा में अपमान, गालियां, चरित्र हनन, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमाना, कस्टडी में बालकों को जो शिक्षा व्यवस्था है उसे देने से रोकना, महिला को नौकरी में जाने से रोकना, किसी व्यक्ति से मिलने जुलने के लिए रोकना आदि, ये मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आने वाली घरेलू हिंसा है। इसी प्रकार आर्थिक हिंसा के अंतर्गत जो बच्चे अनुरक्षण में हैं महिला के, उसके मेंटेनेंस के लिए धन उपलब्ध न कराना, महिला को रोजगार चलाने से रोकना, विघ्न डालना, अनुमति न देना, जो वेतन उसे मिलता है वह उससे ले लेना, घर से बाहर निकलने को मजबूर करना, ये सभी चीज़ें आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। कानूनी पीड़िता की सहायता के लिए एक संरक्षण अधिकारी की व्यवस्था अधिनियम धारा 8 और 9 में देता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है, जो कि हिंसा की शिकार महिला को संरक्षण और सहायता देती हैं। अब हम देखते हैं कि महिला को सहायता देने वाली संरक्षण अधिकारी के कार्य क्या हैं। हिंसा के पूरे विस्तार को हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में DIR कहा जाता है। महिला से पूछकर या घटना स्थल पर जाकर या किसी को भेजकर घटना की स्थानीय सीमा में आने वाले थाने में इस रिपोर्ट को प्रेषित करने का कार्य संरक्षण अधिकारी करती है। व्यथित व्यक्ति को संरक्षण आदेश की अगर आवश्यकता है तो जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें दिए गए अनुसार स्थानीय सीमा के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषण करती है। न्यायालय प्रकरण में व्यथित व्यक्ति की सहायता के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कराती है। सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार करके रखती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर में ये सहायताएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें विधिक सहायता, परामर्श सहायता, आश्रय प्रदाता, चिकित्सा सुविधा। ये जो सेवा प्रदाता हैं ये अधिनियम की धारा 10 और नियम 11(1) के पालन में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन करते हैं। एवं सेवा प्रदाता कौन हो सकता है, वह कोई भी शैक्षिक संगठन हो सकता है, कंपनी, सोसाइटी हो सकती है जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। व्यथित व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी के निर्देश अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आश्रय उपलब्ध कराना एवं जिस आश्रय में महिला को रखा गया है उसकी सूचना थाने को एवं मजिस्ट्रेट को देना। अगर ऐसी हिंसा है जिसमें महिला के चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता है तो चिकित्सा रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को सौंपना और इस रिपोर्ट को जो DIR है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, उसके साथ स्थानीय पुलिस थाने को सौंपा जाता है। विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट को एक प्रति संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। जो सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी महिलाओं की सहयोग में कार्य करते हैं उन्हें विधिक संरक्षण प्राप्त है। उनके सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।
इस घरेलू हिंसा के मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य एवं अधिकारिता के बारे में भी इस अधिनियम में बतलाया गया है। घरेलू हिंसा की घटना घटित होने पर किस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्रवाई होगी, इसके बारे में अधिनियम कहता है कि व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से जहां निवास करता है, कारोबार करता है या नियोजित है, या जहां मोटिव उत्पन्न हुआ है, उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट क्लास वन के यहाँ कार्यवाही होगी। और मजिस्ट्रेट के यहाँ की कार्यवाही की एक समय सीमा भी होगी। जिस दिन आवेदन प्राप्त होता है उसके 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई की जाएगी। प्रथम सुनवाई से जो निपटारा है वह 60 दिन के अंदर होना है। आवेदन प्राप्ति की सूचना प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट या जो व्यक्ति पीड़ा पहुंचा रहा है उसको 2 दिन या युक्तियुक्त समय पर पहुंचाना होता है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यथित को दिया जाने वाला अनुतोष। इन अनुतोष के रूप में परामर्श सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदान किए जाने हेतु आदेश देगा, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता हेतु निर्देश देगा। कोई ऐसी महिला हो सकती है या उस महिला की रिश्तेदार हो सकती है जो घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र कर मजिस्ट्रेट को अपने आदेश के लिए सहयोग प्रदान करे। जो संरक्षण अधिकारी होता है, धारा 18 इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। संरक्षण आदेश धारा 18 में दिया गया है। यह इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। व्यथित के आवेदन पर सूचना पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है, घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करेगा और रिस्पोंडेंट को इस तरह के कार्य करने से रोकेगा, जैसे कि घरेलू हिंसा के कोई कार्य को करने से रोकना, घरेलू हिंसा में सहायता पहुंचाने या दुष्प्रेरण करने से किसी को रोकना, व्यथित के कार्यस्थल या अन्य स्थान पर जहां वह आती जाती है वहां प्रत्यर्थी को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित व्यक्ति से किसी भी माध्यम से संपर्क करने से रोकना, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, दूरभाष आदि के द्वारा भी। इसी प्रकार धन संबंधी व्यवस्था को प्रभावित करने से रोकना, अगर संयुक्त लॉकर है या बैंक लॉकर है, स्त्री धन है, उसकी संपत्ति को प्रभावित करने से रोकना, या फिर ऐसा कोई आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार किसी अन्य प्रकार के निर्देश देने का भी मजिस्ट्रेट को अधिकार है। अब इसके अलावा एक और आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, निवास आदेश। व्यथित को निवास स्थान से बेकब्जा करने से रोकने का आदेश, संयुक्त निवास से प्रत्यर्थी को हट जाने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान में प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने से रोकने का आदेश, व्यथित घटना के पूर्व जहां रह रहा था वैसी ही व्यवस्था रिस्पोंडेंट द्वारा अन्यत्र करने का आदेश, व्यथित का स्त्री धन या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी की वो हकदार है उसे वापस लौटाने का आदेश, व्यथित की संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार शर्त लगाने वाला आदेश, जैसे कि संतान अगर विद्यालय जाता है तो वहां पर प्रत्यर्थी को मिलने से रोकना, या फिर प्रत्यर्थी मिलेगा तो व्यथित की उपस्थिति में ही मिल सकेगा। अब मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में अधिनियम कहता है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थाने के प्रभारी अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज को व्यथित को संरक्षण देने वाले आदेश के क्रियान्वयन में सहायता का निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा। देखिए, कोई भी जो कानून है उसका महत्व तभी है जब अगर उसको भंग किया जाए तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी हो, तो इसलिए संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जो दिए जाते हैं अगर उसको रिस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी भंग करता है तो उसको 1 वर्ष का साधारण या सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकेगा। अगर संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्य करने में विफल रहता है तो उसे भी इसी तरह 1 वर्ष का कारावास या 20,000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी हैं, जैसे प्रतिकर आदेश जो धारा 22 में वर्णित है। अगर व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है किसी मानसिक यातना या भावनात्मक कष्ट के लिए तो प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट क्लास वन पारित कर सकेगा। इसी प्रकार अभिरक्षा का आदेश है, व्यथित की संतान की कस्टडी व्यथित को दिए जाने हेतु आदेश। इसी प्रकार जो सबसे एक महत्वपूर्ण आदेश है वह है अंतरिम या एक पक्षीय आदेश। सामान्यतः दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरांत आदेश पारित होता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को घटना की परिस्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए बिना रिस्पोंडेंट को सुने आदेश देना आवश्यक है तो इस तरह का एक पक्षीय आदेश भी मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 23 के अनुसार पारित कर सकेगा। अब अगर मजिस्ट्रेट के इन आदेशों से दोनों में से कोई भी पक्ष
व्यथित होता है, तो इसमें

0: अपील के अधिकार के लिए धारा 29 में प्रावधान है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति या तामीली के 30 दिन के अंदर सेशन न्यायालय में इसकी अपील हो सकेगी। इस तरह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक ओर पीड़िता को अन्याय के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था देता है, इस व्यवस्था के अभाव में महिलाएं घर की चार दीवारी में हिंसा सहने के लिए विवश हो जाती थी और उनके इस कष्ट का अंत उनके जीवन के साथ होता था। वहीं दूसरी ओर हिंसा करने वालों को सावधान करता है कि ऐसा करने पर उन्हें किस तरह की विधिक परेशानी एवं दंड को भुगतना होगा। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रदान करने में यह कानून अत्यंत उपयोगी है।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था घरेलू हिंसा अधिनियम, जानकारी दे रही थी डॉक्टर मयूर शिखा। सखियो, हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभ लेंगी। अब रुक करते हैं अगले विषय का। सखियो, 21 मई का दिन हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध का। सखियो, आतंकवाद केवल हिंसा नहीं बल्कि मानवता पर हमला है। आतंकवाद के द्वारा किसी भी देश या समाज में भय, अशांति और विभाजन को विस्तार देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारा देश हमेशा प्रेम, शांति और भाईचारे के मार्ग पर आगे बढ़ा है। सखियों, आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि किसी भी प्रकार की हिंसा, कट्टरता और नफरत को अपने समाज में स्थान नहीं देंगे। सखियों, यहाँ हम बहनों की भूमिका और दायित्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से एक संस्कारी समाज की नींव घर से ही रखी जाती है, जिसके लिए हम बहनें बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और छोटी बड़ी हर बात सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, और यही सीख उस बच्चे का जीवन तय करती है कि समाज में वह कैसा व्यवहार करेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा यही सीख देते हैं कि बच्चों के सामने कभी भी आपसी मतभेद या किसी की बुराई की बातें मत करो, बच्चे के कोमल मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सखियों, रिश्तों को आपसी समझ, शांति और सौहार्दता से मजबूत बनाएं और मानवता के मूल्यों को समझकर अच्छे समाज का निर्माण हम सब करें। सखियों, अच्छे समाज के निर्माण के लिए मन का अच्छा होना आवश्यक है, और मन को अच्छा बनाने के लिए संगीत से बढ़कर और क्या साधन हो सकता है। तो सखियों, सुनते हैं मधुर गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मौसम से, और इस गीत को गाया है भूपिंदर और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के सबसे युवा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश को तकनीकी और संचार क्रांति की नई दिशा दी। कंप्यूटर, दूरसंचार और युवाओं को आधुनिक विचार से जोड़ने का जो सपना उन्होंने देखा था, वही सपना आज विकसित भारत की आधारशिला बना हुआ है। सखियों, राजीव गांधी जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि किसी भी देश के विकास का मार्ग शिक्षा, तकनीक और संवाद से होकर गुजरता है। उनके इसी संदेश को विकास की नींव मानते हुए उनकी पुण्यतिथि पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रंग अलग हों, रूप अलग हों, फिर भी दिलों का मेल रहे। भाषाएं चाहे जितनी बदलें, अपनेपन का मेल रहे। सखियों, हम सब मिलकर संवाद और विकास के साथ सांस्कृतिक विविधता को अपनाएं, आतंकवाद का विरोध करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। सखियों, आज के महिला सभा कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए आकाशवाणी और अब अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को। नमस्कार।

0: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कवि श्री राग तेलंग,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: पानी की हर बूंद है अनमोल,
5: बहने ना दें इसे बेमोल,
4: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
5: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: नसनसनी नसनसनी नसनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर दिन ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति। आज कलाकार हैं तिलोत्तमा विश्वकर्मा, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये लंगोरिया।

और अब हम आपको एक बन्नी सुनवाना चाह रहे हैं, स्वर एक बार फिर तिलोत्तमा विश्वकर्मा का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने ये बन्नी गीत सुना, और इसमें आवाज़ थी तिलोत्तमा विश्वकर्मा की। और इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय हुआ है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में एक बार हम आपको पुनः सुनवा रहे हैं जबलपुर केंद्र की ही प्रस्तुति। अभी कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली रचना एक गीत के रूप में।

और कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं मीराबाई का यह भजन मोनल सावरकर के स्वर में।

0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था और कलाकार थी मूणल सावरकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार भोपाल, सुबह का नमस्कार खुशगवार हर बार, नई जानकारियां शहर और देश दुनिया की, गूंजेंगी स्वर लहरियां नए पुराने गीतों के साथ। सुबह 7:20 पर सुनिए हर रोज नमस्कार भोपाल।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं भागम भाग फिल्म में कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान को। प्रीतम ने इस गीत की धुन बनाई थी और बोल थे समीर।

और अब आ रहा है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोलों से सजा हुआ वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, फिल्म का नाम गिरफ्तार।

0: और गिरफ्तार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली लौटकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान भारत की कृषि नीतियों की वैश्विक स्वीकृति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। इसमें उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। इस तरह इस साल RTE के तहत मुफ्त दाखिला पाने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,17,000 से ज़्यादा हो गई है। भोपाल की चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम

अल्टीमेटम की मांग खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर शव को दिल्ली एम्स भेजने की बात भी कही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज्यादा तपा, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया और 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भिंड, दतिया और निवाड़ी समेत 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। कल रात के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा बनाए रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कल आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के दर्शन पूजन कर हवन अनुष्ठान किया। झाबुआ के भावेश सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने के लिए राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती में कल राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक दुकानें स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
4: It is ironic that Pakistan with its long time.
5: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
4: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
6: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
7: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
6: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क

0: राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय, ये
4: चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द

0: को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। साथ दिया है बाबुल सुप्रियो ने, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

और भीगी पल के फिल्म का ये गीत आपने सुना था, किशोर कुमार का गाया हुआ। एमजी हशमत ने इसे बोल दिए थे और जुगल किशोर तिलकराज ने संगीत तैयार किया था। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त, रामचंद माखीजा, काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बीबी स्वाति और पूरा माखीजा।

परिवार बनियापारा धमतरी से इस गीत को सुनना चाहता था। अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और पंजाब राव निम्बालकर, साथ में है संदीप पाटिल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, मानिकपुरी लेवई से रंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छिनपुर से विश्वनाथ साहू और मवाली सिंगारपुर से सालिक बुजारी।

ये गीत आपने सुना युवराज फिल्म से, अलका याग्निक और जावेद अली ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी, गुलजार के बोल थे और एआर रहमान की धुन थी। सुनना चाहा था ग्राम फांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत से हैं प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू और तासु, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा ने कोलार रोड भोपाल से इसी गीत को सुनना चाहा था। प्रमिला गंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, मालवा रेडियो श्रोता संघ से ये चिट्ठी लिख भेजी है। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने।

रविंद्र जैन के गीत और संगीत को आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत को और इसके बाद वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन सभी दोस्तों ने चिट्ठियां लिख भेजी है उन सभी के नाम आपको बता दें। संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया, इन्होंने घंटाघर चौक खंडवा से हमें खत लिख भेजा था। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर ने चिट्ठी लिखी थी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, साथ में हैं झावेंद्र कुमार, राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने सुनना चाहा है हमारे कार्यक्रम के इस अगले गीत को। डोंगरगांव जिला छत्तीसगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगली और आखिरी चिट्ठी है उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु तासु, विकास शर्मा, ज्योति पुरुषवानी, मीना, नीतू सिंह और प्रतीका चतुर्वेदी की, इन्होंने हमें झारखंड से लिख भेजा था। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत में आप सुन रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के बोलों को, रवि के संगीत निर्देशन में महेंद्र कपूर और लता जी का गाया हुआ ये गीत है। फिल्म का नाम है भरोसा।

0: और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 होने को हैं। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री कोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कर जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। भोपाल की चर्चित मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। और मौसम में प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, निवाड़ी समेत प्रदेश के 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। इस सभा के समापन से पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। ग्राम लक्ष्मी आप सुन सकते हैं 7:21 पर। और सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 8:00। आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी रात 10:00। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उल्हास कासलकर का राग यमन कल्याण में ख्याल गायन आप सुन सकते हैं। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। आप शाम 5:00 से हमारे प्रसारण को पुनः मीडियम वेव पर सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हम तिलोत्तमा विश्वकर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ इस लंगोरिया से।

इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और उस सुगम संगीत का अब कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान है और कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में।

और चित्रपट संगीत के आखिर में आप सुनेंगे किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। साथ में आवाज है अलका याग्निक की, इंदिवर के बोल राजेश रोशन का संगीत, फिल्म का नाम कामचोर।

0: और इसी नगमे के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर। 3:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि निवेशकों से कथित तौर पर 49 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 7 राज्यों में लंबित 53 प्राथमिकियों को एक साथ मिला दिया जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बीच भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP 6.4 से बढ़कर 6.5% हो गया है, जो 140 करोड़ भारतीयों की क्षमता को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया है। इससे व्यापार के लिए बेहतर वातावरण निर्मित करने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। प्रदेश में अब तक 12,56,000 से ज्यादा किसानों से 93 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिसमें 40 रुपये बोनस भी शामिल है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। आप सुनिए नाटक खुशबू का नगमा। लेखक हैं राम वल्लभ आचार्य और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
2: प्रस्तुत है नाटक खुशबू का नगमा, लेखक कमर जमाली, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर

0: लिखी जा रही थी, और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
1: बिल्कुल,
0: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
1: जी,
0: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े, और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में, और उस FIR के बाद तो वो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
1: बिल्कुल,
0: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब इतना बड़ा आतंकवादी, और
0: इतना बड़ा
1: जी
0: कि सब जान, भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिस पे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला, BSF के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था, और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था 27 और 28 अगस्त 2003 को, एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे, और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के ज़मीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जेएनके पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा, और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए, कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया, और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही, और
1: बिल्कुल
0: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है, और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा
0: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए, और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि PM का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
1: बिल्कुल,
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं, लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसको पकड़े जाने के बाद जो फॉलोअप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक।
1: बिल्कुल,
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन। हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा,
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे, मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया है बेवकूफ बना दिया इन्फार्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा,
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा था
0: जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था। अच्छा, पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा,
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके,
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा,
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोली।
1: अच्छा,
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद वो सेकंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती, पहले मौके में अगर आप कर गए तो तो आप

0: अंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया?
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर हम इसकी बात, जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011 2342 1084 और 2342 1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज़्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही ख़त्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका ख़राब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा, ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पे ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने
1: है
0: आपका दिल बचाया।
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, और फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
0: जी जी जी।
1: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका की तुरंत तो आइडेंटिटी
0: नहीं
1: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
0: जी।
1: और नीचे आए, पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
0: जी,
1: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
0: जी,
1: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
0: जी,
1: रहा था
0: जी।
1: मैंने कहा सर फॉर व्हाट, बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
0: खत्म हो गया, सही
1: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
0: जी,
1: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा। लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
0: जी, जी,
1: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो जाता है।
0: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी, कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो नमूने पेश करता।
1: वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज़ इन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
0: और फिर
1: दिस सारीमर्ग किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जे एन के असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
0: जी,
1: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
0: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवादी
1: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
0: जी,
1: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
0: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
1: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
0: बिल्कुल
1: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
0: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
1: मैं
0: क्योंकि
1: इसको क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
0: बिल्कुल,
1: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
0: बिल्कुल,
1: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
0: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
1: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
0: जी,
1: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
0: जी।
1: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
0: डगमगाए जी,
1: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
0: बिल्कुल।
1: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
0: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
1: बटालियन का हेड था
0: जी, मेरे आप लीड कर रहे थे,
1: लीड कर रहा था मैं, चाहता तो अपने किसी नंबर टू को भेज सकता था, नंबर थ्री को भेज सकता था,
0: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
1: खुद के रहने से
0: जी
1: मोराल बड़ा अप होता है,
0: बिल्कुल,
1: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
0: मौत के मुंह में घुस गया
1: और घुसे वो,
0: बिल्कुल,
1: गाजीबाग के माथे में घुसना कोई सिंपल।
0: और जैसे आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
1: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, हम
0: मिलता नहीं,
1: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
0: बिल्कुल,
1: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
0: दुबे सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
0: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्प्स।
1: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी,
0: जी
1: बाय द आईसी स्कॉडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एन एन दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी जी, तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैच जो
1: बच्चन,
0: हाँ अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है,
0: रखी है वो आपकी यादगार।
1: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल,
1: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है, और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल।
1: है
0: सर एक चीज, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता, वहां जान जाएगी या जान ली जाएगी,
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
0: या मरने का,
1: तीसरा कुछ नहीं होता,
0: तीसरा कुछ नहीं, या तो
1: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
0: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
1: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं,
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
0: जी,
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं, प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं, जय हिंद सर आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त
0: जी,
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पौश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच।
0: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर, मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला इत्तला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद। बड़ा प्रीशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें तो।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस का हम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।
2: उस

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई, जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए।
1: अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा था
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गाँव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे, और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी ज़िंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद

0: बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तेफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
1: जी,
0: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
1: जी,
0: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं, कर सकते,
1: नहीं
0: थे,
1: कर सकते थे,
0: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल, तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
1: जी,
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल, इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए और रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल,
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में सरकारी,
1: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा,
0: उसके अलावा ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा,
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा,
0: मेरे दिल से लगा हुआ है, मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा,
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है,
1: कोर एरिया है,
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
1: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल,
0: बट हमारे

0: देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी।
1: ओके।
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
1: जी जी जी
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
0: क्या बात है,
1: क्या बात। नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती हैं,
1: बिल्कुल
0: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
1: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे। हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है, तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
0: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं। तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्व शामिल होना पाए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। और प्रदेश में अब तक 12,56,000 से ज्यादा किसानों से 93,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान हो रहा है, जिसमें 40 रुपये बोनस भी शामिल है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि,
0: और हम आप सभी का युवाओं को प्रेरित करने वाले हमारे खास कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसी तारतम्य में आकाशवाणी @90#RJNext कार्यक्रम के अंतर्गत एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिवस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जबलपुर में किया गया,
0: और इस प्रतियोगिता के विजेता रहे हमारे दोस्त पीयूष चौधरी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीयूष, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे कार्यक्रम में?
2: बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता और रश्मि। मैं युवाणी कार्यक्रम को रेगुलरली फॉलो करता हूं और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।

0: दोस्तों, कभी सोचा है भीड़ का हिस्सा बने रहे तो हम क्या पाएंगे? नए रास्तों पर चलने से ही तो पहचाने जाएंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, और मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो बड़ी ही गलत बात है।
2: दोस्तों, जब एक बार एक मशहूर पेंटर से पूछा गया कि उनकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग कौन सी है, तब उन्होंने एक खाली कैनवस की तरफ इशारा किया और कहा ये, क्योंकि इसमें अभी संभावनाएं अनंत है।
0: वाह अंकिता, कितनी गहरी बात है। दोस्तों, हम और आप भी उस खाली कैनवस की तरह ही तो हैं। ज्यादातर लोग वही पुरानी तस्वीर बनने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चली आ रही है, वही 9 to 5 जॉब वाले सेफ रास्ते।
1: पर कुछ लोग होते हैं जो किसी बनी बनाई तस्वीर का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद एक नया मास्टरपीस तैयार करते हैं।

0: और ऐसे ही जुनून का नाम है स्टार्टअप।
1: जी हाँ दोस्तों, जैसे उस पेंटर ने खाली कैनवस में भविष्य देखा, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर मुश्किलों में मौका देखता है। स्टार्टअप एक नया और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स का एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। दोस्तों, हमारे बीच से कई लोगों ने वही सदियों पुरानी रैट रेस का हिस्सा बनने के बजाय अपनी रेस खुद डिजाइन करी और आज दुनिया उन्हें सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जानती है। सही कहा रश्मि, और इसी बदलाव का समर्थन देने के लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत फंडिंग और टैक्स बेनिफिट से युवाओं को स्टार्टअप की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया इंक्यूबेशन सेंटर्स, मुद्रा लोन और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों से सपनों को पंख दिए जा रहे हैं।
0: लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप रातों रात खड़ा नहीं होता, इसके लिए डेली बेसिस पर कुछ आदतें अपनानी होगी,
1: जैसे ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज को क्यों और कैसे के नजरिए से देखें, क्योंकि हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। और लर्निंग और नेटवर्किंग, नए स्किल्स, डिजिटल टूल्स और मार्केट ट्रेंड को समझें। साथ ही ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके विजन को समझे और उसे और बेहतर बनाए।
0: और साथ ही एक्सपेरिमेंट और रेजिलियंस, एक्सपेरिमेंट करें और फेलियर से डरे नहीं बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह लीजिए।
1: दोस्तों, जो चली आ रही है सदियों से, उस लकीर को मिटाकर तो देखो।
0: दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, बस एक कदम उठाकर तो देखो।
1: क्योंकि किनारे पर खड़ी कश्ती हमेशा महफूज ही रहती है, पर कश्तियाँ किनारों के लिए नहीं लहरों से लड़ने के लिए बनती है। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हिचकी से ये गीत।

0: दोस्तों, कभी कभी इतिहास एक ऐसा दीपक जलाता है जिसकी लौ पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती है, और हिंदी साहित्य के आकाश में ऐसे ही एक दीपक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस तरह माली बिखरे हुए पौधों को तराशकर एक सुंदर उपवन बना देता है, वैसे ही हिंदी साहित्य के बगीचे को संवारने वाले शिल्पकार थे आचार्य द्विवेदी।
0: आचार्य द्विवेदी ने भटकती हुई हिंदी भाषा को एक सही दिशा दिखाई और बिखरे हुए शब्दों को विचारों की गंगा में बदल दिया। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। साधारण परिवार और सीमित संसाधन होने के बावजूद उनकी जिज्ञासा हमेशा से ही असाधारण थी।
1: आचार्य द्विवेदी बचपन में कई बार दूसरों से किताबें उधार लेकर आते थे और रात भर उनकी हाथ से नकल उतारते थे, ताकि किताब लौटाने पर भी वह उसके अंदर का ज्ञान अपने पास सुरक्षित रख सके।
0: उन्होंने हमेशा स्वाध्याय को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी पर महारत हासिल की। आचार्य द्विवेदी ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे विभाग में नौकरी से की, लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब वे सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और 1903 से 1920 तक सरस्वती सिर्फ एक पत्रिका नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का मार्गदर्शक बन गई।
1: द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैत्री शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान साहित्यकार उभरे। उन्हें द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, एक ऐसा काल जिसमें हिंदी साहित्य को आधुनिकता और सामाजिक चेतना से जोड़ा।
0: 21 दिसंबर 1938 को आचार्य द्विवेदी का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके शब्द आज भी जीवित हैं, हर उस पंक्ति में जो समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी हमें सिखाते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद असीम ऊंचाइयां पाई जा सकती हैं अगर हमारे अंदर सीखने की लगन और समाज के प्रति जिम्मेदारी हो। इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म उरी से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में यह गीत।

0: दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे स्टार्टअप भविष्य को लेकर बात की, जिसमें हमने जाना किस तरह नए बिजनेस सेटअप करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हर क्षेत्र, हर नई सोच और हर नए प्रयास के विकास की ओर ले जाने का कार्य हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
1: अच्छा, अब किस नए प्रयास की बात कर रही हो तुम अंकिता?
2: रुको पीयूष, मैं बताती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौशल उन्नयन के बारे में। आज बदलते परिवेश के कारण हम सभी की लाइफस्टाइल में काम करने के तौर तरीकों में भी समय के साथ साथ कई बदलाव आए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि। जैसे पहले हाथों से सारे लिखा पढ़ी के काम होते थे, आज टेक्नोलॉजी के चलते कंप्यूटर, मोबाइल फोन के द्वारा हमारे काम और भी आसानी से होने लगे हैं।
0: दोस्तों, कौशल उन्नयन का मतलब ही है अपने काम करने की काबिलियत को और बेहतर बनाना, नई चीजें सीखकर या पुराने काम में सुधार करके खुद को और सक्षम बनाना।
1: इससे युवाओं को रोजगार पाने के और सुनहरे अवसर मिल सकेंगे। साथ ही हर युवा नए स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक सही कदम उठाने योग्य बन पाएगा।
2: और दोस्तों, इसलिए इस दिशा में सरकार के द्वारा कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और डिजिटल ऑनलाइन पहल जैसे कई प्रोग्राम्स।
0: और साथियों, इन कार्यक्रम का सबसे ज्यादा फायदा हम युवाओं को ही होगा। घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमें हमारी स्किल्स को बढ़ाने का मौका जो मिल रहा है, बस जरूरत है इस ओर ध्यान देने की।
2: जी हाँ दोस्तों, और इसलिए हम सभी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने शेड्यूल में से रोज थोड़ा सा समय निकालकर अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं हेशम अब्दुल वाहब की आवाज़ में फिल्म द गर्लफ्रेंड से यह गीत।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इसमें लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था, हाका किस देश के मूल निवासियों का पारंपरिक नृत्य है। इसका उत्तर है, न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाका न्यूजीलैंड देश के माओरी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। ये अक्सर युद्ध, उपलब्धियों या मेहमानों के स्वागत के समय किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के कार्यक्रम की समापन की ओर पहुंच चुके हैं।
0: अगली मुलाकात का वादा करते हुए मैं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता,
1: और मैं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि,
2: और मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष,
1: आपसे अब इजाजत लेते हैं। हम मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नई चर्चाओं के साथ।
0: तब तक दयालु बने,
2: जिज्ञासु बने
1: और दुनिया में अपनी उज्जवल रोशनी बिखेरते रहें।
3: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नीति मोहन और पपून के गाए गीत से। तुमको मेरी कसम फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है श्वेता बोथरा ने और संगीतकार प्रतीक वालिया।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए द डिप्लोमेट फिल्म का गीत। वरुण जैन, रोमी और अनुराग सेकिया ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनुराग सेकिया ने।

मिस्टर आज़ाद, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। इला अरुण और कुमार सानू ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

अगला गीत एआर रहमान की आवाज़ में है, इरशाद कामिल का लिखा हुआ है और संगीत एआर रहमान ने दिया है। फिल्म है तेरे इश्क में।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरी संयंत्र मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरी संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक

0: केंद्र सरकार की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है। अब तक 10,19,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 4,38,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि समाधान योजना के तहत 15 मई तक 29,81,000 बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 3 नवंबर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की गई थी, जो कि 15 मई तक लागू थी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
3: जी
2: श्रोताओ, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओ, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
3: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
3: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात

0: करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
0: जी।
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
0: जी।
1: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी

0: हूँ। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोलावन के बारे में कुछ और बातें। शोलावन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी,
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा

उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी।

0: जल्दी से।
1: हाँ, सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ, एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
8: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ।
5: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़।
6: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
8: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काट।
9: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिसको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
10: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
6: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
7: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
7: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
6: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
5: वो उसे काटने लगे।
9: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
6: अच्छा ठीक है
7: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
5: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
8: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
7: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
5: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
11: अरे वाह अटकू मटकू,
5: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
6: पेड़ हमारे
7: दोस्त हैं।
6: जीवन में हरियाली लाओ,
7: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
3: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

उमंग एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

प्रेम तपस्या फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

स्काई फोर्स फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विशाल मिश्रा की आवाज़ में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

तवायफ लीजिए। इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। हसन कमाल ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं रवि।

श्रोता, उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत नादानिया फिल्म से है। सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर।

मिसेज फिल्म का गीत सुनिए विद्या गोपाल की आवाज़ में। अरुण कुमार पल्लवी भारद्वाज हुसैन ने इस गीत को लिखा है। संगीतकार हैं फैजान हुसैन।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लेकिन फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में, शब्द रचना गुलजार की और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: थे पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। आपकी फरमाइश का समय है 10 बजे।

शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सुनेंगे अरुणा सोम कुमार से की गई भेंट वार्ता, पोषण का खजाना, मिलेट्स या श्री अन्न। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय है 9:15। जिले की चिट्ठी सुनवाएंगे 10:00। 10:05 पर महिला संसार में सुनिए सजीव फोनिन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर सुनेंगे पंडित साजन मिश्र का ख्याल गायन, राग है विलास खानी तोड़ी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आपकी फरमाइश का समय रहेगा 12:00, दोपहर 2:30 और रात्रि 10:00। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत दिन में 12:30 पर सुनिए पंचतंत्र धारावाहिक की 9वीं कड़ी। छतरपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में हम आपको सुनवाएंगे 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां हमारे छतरपुर केंद्र की होंगी। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है शाम 6:00। कल रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। खेल जगत में 9:30 पर कल हम आपको सुनवाएंगे देवेंद्र खुराना की वार्ता, अंडर-18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026। दस बजकर 30 पर राग रजनी में सुनिए राग यमन में पंडित साजन मिश्र का ख्याल गायन। कल शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण रहेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे, भारत को मिली 40 अरब डॉलर निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यह 5 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें करीब 40 अरब डॉलर के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वीरभूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजीव गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण पार्टी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन, स्कूल शिक्षा, परिवहन विभाग, जनजातीय कार्य और सहकारिता विभाग की एक एक कर समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर यादव ने कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बोर्ड में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीआईआई, फिक्की जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 14 मई को देवास के टोककला इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के पोस्टर का आज विमोचन किया। ये यात्रा 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल स्रोतों की रक्षा में आगे आने की अपील की है।
3: जल संरक्षण को लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जल गंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस सबसे जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े।
0: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संरक्षण पर विचार विमर्श के साथ ही भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1,000 यात्रियों का चयन किया है।

ये यात्री जून से अगस्त के बीच लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते 20 जत्थों में रवाना होंगे और हर जत्थे में 50 यात्री होंगे। नई दिल्ली में आज 11वीं ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने ई सिगरेट तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये सारा माल चीन से चोरी छिपे मंगवाया गया था। भारत में साल 2019 से ही ई सिगरेट और इस तरह के सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दिनों बालाघाट की सुनीता सिहोरे की खूब चर्चा है। उनके घर में 70 तरह के देशी बीजों का अनोखा खजाना है, जो उन्होंने खुद जमा किया है। आजीविका मिशन की बीज सखी सुनीता ये बीज किसानों को मुफ्त देती हैं और ये बीज कम पानी कम खाद में भी अच्छी पैदावार देते हैं। सुनीता जैसी महिलाओं की बदौलत रासायनिक खेती की आंधी में खो चुके देसी बीज एक बार फिर खेतों में लौट रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 454 बीज सखियां और 29 जिलों में 99 बीज बैंक तैयार हो चुके हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जबकि राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। वहीं सतना, रीवा और टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर और अनूपपुर में आज जनगणना 2027 कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में नाव एवं मोटरबोट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक के साथ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। सागर नगर निगम ने CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीहोर जिला अस्पताल में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों को पोषण टोकरियां बांटी गईं। झाबुआ खनिज विभाग के अमले ने जिले में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 5 वाहनों को जब्त किया है। छिंदवाड़ा वन वृत्त में लक्ष्य का 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण पूरा हो चुका है और शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोना और टीला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली $40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार। 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम। देखो भैया रुक, कितने गर्मी हो रही है, अपन को तो मना नहीं करत कि अपन घर से बाहर निकलें, लेकिन का करें, कछु काम काज आ जाए तो फिर तो बाहर जाने ही आउट है। और हर मौसम देखो एक जैसा तो होता ही नहीं है, कभों बहुत ज़्यादा गर्मी तो कभों बहुत ज़्यादा सर्दी, हर मौसम की अपनी ही एक अलग पहचान होते हैं। और भैया रो इस समय अगर अपन देखे जाए तो गर्मी बहुत ही हो रही है, ऐसे में अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लू है या धूप है वैसे अपन अपनों भी बचाव करके चलें, और जहाँ तक हो सके बहुत ज़रूरी ना होए तब तक घर से बाहर ना निकलें। और मान लो कोनो भी काम काज के लाने अगर बहुत ज़रूरी है और जाने ही पड़ रहा है तो कछु बातन को अपन ध्यान रख करके जो है लू के असर से बच सकते हैं। जैसे कि घर से जो है कछु खा पी के निकलें, अच्छी तरीके से सूती कपड़ा से या गमछा से मुंह नाक आँख को अच्छी तरीके से बांध लें, अपने संगे ठंडे पानी लेके चलें, और जो इस समय पेय पदार्थ जो अपन सरलता से बना सकते हैं उनको उपयोग करें, और अपने शरीर में पानी की कमी को होवे से बचें। इसके संगे संगे अपन तो देखो अपनी समस्या बता करके या अपन को कोनो दिक्कत होते है तो अपन बाइक को कछु न कछु समाधान निकाल लेते हैं। अपने संगे संगे अपने पर्यावरण में बहुत सारे पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हैं, उनको भी इस समय गर्मी से बचाने के लिए अपन को कोनो ना कोनो कामकाज बैयारो करने आउत है। जैसे कि अगर अपन देखें कि अपने घर के आसपास भी कई देखो प्रकार की चिड़िया हैं, बेबी आ जाती हैं, तो उनके लाने कोनो सकोरा में या मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सो पानी रख दें, तना सो जो है दाना रख दें, जिससे कि उनकी भूख प्यास मिट सके। वहीं जो पशु हैं उनको भी, जो अगर अपने घर में अपने दुधारू पशु हैं तो उनको भी ध्यान रखें कि एक निश्चित समय के बाद उनको पानी की पर्याप्त मात्रा दें पीने के लिए। साथ ही जो उनके पीने के पानी के बर्तन या हौजा हैं या हौद हैं उनकी समय समय पे साफ सफाई को भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर अपन स्वस्थ हैं तभी अपन देखो उनको ध्यान रख सकते हैं। और अच्छो और साफ सुथरो पानी पीवे से ही अपन खुद भी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने जो पशु हैं उनको भी बचा सकते हैं। तो उनके रहवे की जगह या जहाँ अपन उनको बांधत हैं वो जगह पूरी तरीके से साफ सुथरी रखें। साथ ही दिन के समय अगर अपने पशुओं को अपन कहूँ ऐसी जगह बांध रहे हैं कि बाहर अपन को सफाई करने हैं तो उस समय छाँवदार ठंडी जगह पे बांधें, जिससे कि वे लू लपट से बच सकें। और जो चारा है हरो अगर अपन लगाते ही हैं, अपने घर के आसपास भी लगा लेते हैं, अपने गांव के आदमी में भी लगा लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें वो भी दें, जिससे कि उनमें जो तत्वों की कमी हो जाते हैं उससे वे बच सकें। तभी जो है अपने पशु स्वस्थ रहें और उनसे अपन अच्छो उत्पादन भी ले सकें। भैया इस समय जो सबसे ज़्यादा समस्या आउत है बात है पानी की, और पानी को सही तरीके से उपयोग करके भी अपन सभी जो है ना भैयारों जो है जल संरक्षण में सहयोग दे सकते हैं। कहते ना कि छोटे छोटे से अगर अपन ने प्रयास करे तो वे भी कोनो कम नहीं होते। जैसे जैसे देखो गर्मी बढ़ रही है अपन सभी अपने आसपास भी देख रहे हैं कि जो जल स्रोत हैं या जहाँ से अपन को पानी की मात्रा प्रदान होती है वे धीरे धीरे घटन लगते हैं। जो नदी हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, उनको जल स्तर भी नीचे चलो जाऊत है। तो अब इस समय बारिश तो हो नहीं सकते है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी की जितनी मात्रा है उसका सही तरीके से उपयोग करें, यानी कि पानी की बर्बादी को रोकें, उपयोग तो करें जितनी अपन को आवश्यकता हो। जैसे कि कई बार देखते हैं ना कि छोटे से काम के लाने अपन को जहाँ एक बाल्टी पानी में काम हो सकता है, कई बार जो है नल से सीधे उपयोग करे से पानी की अधिक मात्रा बह जाती है, तो हम वहाँ पे जितने पानी की आवश्यकता है सीधे नल से उपयोग ना कर करके बाल्टियों का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि अपने घरों में नल लगे होते हैं तो कई बार देखो जाता है कि वे सही से काम नहीं कर रहे थे तो धीरे धीरे करके पानी टपकन लगते हैं, इससे भी पता नहीं चलत है कि कितने पानी की बर्बादी हो जाऊत है। कहते ना कि जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरत है, वैसे ही अपनी एक एक पानी की बूंद बचाए से ही
जो है पानी की समस्या से अपन निपट सकते हैं। तो ऐसी अगर कोनो नल है तो उनको तुरंत सुधार करवाएं। साथ ही नलों को खुला ना छोड़ें। कई बार अपन दातुन करत हैं या कोनो और काम काज कर रहे हैं तो अपन का करते हैं सीधे नल को खोल लेते हैं, और छोटे छोटे काम के लाने, दाढ़ी बनावे के लाने अपन एक मग्गा में पानी लेकर के उपयोग कर

सकत है। ऐसे करे से अपन बहुत सारे पानी को भैयारो बचा सकत हैं। वहीं पानी की ज़रूरत के अनुसार ही अपन उपयोग करें। और हाँ भैया, वर्षा के जल को अगर अपन चाहते हैं कि अपन पूरी तरह से संचय करें, तो इसके लिए भी प्रयास अपन को अभी से करने आए। और उनमें से सबसे पहलो प्रयास जा होते कि जो अपने जल स्रोत हैं, इस समय अपन देखते हैं कि बहुत से जल स्रोत हैं उनको जल स्तर जो है नीचे चलो गया है और उनमें थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। तो यही सबसे उत्तम समय होता है कि अपने जो जल स्रोत हैं उनको अपन सुधार करके फिर से सही कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठो हो सके। और इके लाने कई प्रकार के जो प्रयास हैं शासन के द्वारा भी करे जा रहे हैं। और तो और बहुत से भैया बहन जो किसान हरे हैं, वे भी खेत तालाब योजना को लाभ उठा करके अपने खेतों में तालाब को भी निर्माण करते हैं, जिससे कि आगामी जो बारिश का जल है वो इकट्ठो होए, जिससे उनकी खेती भी अच्छी रहे और पानी की कमी से भी बच सकें। क्योंकि आप सभी जानते ही हो कि खेती के लाने हर चरण में ध्यान देवी की ज़रूरत होती है, और उन्हीं में से एक मुख्य चरण होते सिंचाई। अगर अपन की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर रखी है तो अपनी जो फसलें हैं वे लहलहा उठती हैं। और इके लाने ज़रूरत होते पानी की, तो अगर अपन के खेत में ही अपन ने तालाब बना रखे हैं तो अपन पानी की जो है आवश्यकता जो अपनी फसल के लाने ज़रूरत है बाकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इसे कहो भी जाता है कि आज अगर अपन पानी बचाएंगे तभी अपन जो है अपना कल भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। तो अपन सबको यही प्रयास करने हैं कि जहाँ तक हो सके पानी की बचत करें, उसके दुरुपयोग को रोकें, तभी जो है अपनी जो धरा है हरी भरी रहेगी और पानी के जो दुरुपयोग हैं उनको अपन रोक पाएंगे। और अब सुनते हैं लोकगीत, स्वर है ममता गोस्वामी का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

भैया बहनों देखो, कहते हैं ना कि कोनो भी काम अगर मन से करो जाए तो बातें ही अलग होती है। और यह बात बिल्कुल साची है कि अपनी चाहे बहने भैया रहे, अगर कोनो भी काम करवे की ठान लें तो निश्चित तौर पे पूरी हो जाते हैं। और इसमें उनके घर परिवार के सभी लोग सभी सहयोग करते हैं, जिससे कि वे आगे बढ़ें और खूब ही खूब तरक्की करें। और भैया रो, आप जाना तो आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, और अगर अपन कही जाए तो बहुत से लोग ऐसे भी

0: हैं जिनकी दिन की शुरुआत भी जो है चाय से होती है। जब अपन को अपने दोस्तों से अपने मित्रों के साथ कछु बतियाने होए तब भी अपन को देखो चाय पे ही बैठ के अपन संगे संगे अपनी चाय चलत है और अपनी बातचीत भी होते है। जो प्रेम का प्रतीक मानी जाते हैं जब अपन मिलत हैं जुलत हैं तो जो चाय है अपने एक सहयोग की तरह काम करत है। और अपने देश की आसाम की और दार्जिलिंग की चाय है बहुत अच्छे उत्पाद में से मानी जाती है और सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में अपने देश को नाम आउत है। इसके साथ साथ चाय जो है कई प्रकार की भी होते हैं अपन जानते हैं, जैसे कि अदरक वाली चाय तो कुछ लोगों को इलायची वाली चाय तो किसी को मसालेदार चाय भी बहुत पसंद आते हैं। और आजकल तो बहुत से लोग ग्रीन टी भी जिसे अपन हरी चाय कहते हैं वो भी पीना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो एक कप चाय के साथ रिश्तों में मिठास घुस जाती है ऐसा अपना मीज होता है जब हम अपनी चाय के साथ साथ अपने दोस्तों से अपने परिवार के लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर कोई हमारे घर में आ जाता है तब भी हम चाय बनाते हैं उसका स्वागत करते हैं और चाय की मिठास के साथ साथ रिश्तों में मिठास लाते हैं। अब चाय देखो कई प्रकार की आज के समय में अपन देख रहे हैं जो कि लाभदायक भी है और कछु इसके नुकसान भी हैं। तो अपन को ऐसे चाहिए कि जो चाय है विभिन्न प्रकार की हैं अपनी एज या उम्र कही जाए अपने शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भय पियो चाहिए। अब जैसे कि आज के समय में हरी चाय की अगर बात करें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट वाले जो है अच्छे गुण होते हैं जो कि वजन को नियंत्रित करने में ताजगी को लाने में सहयोग करते हैं। और आजकल हर्बल चाय का भी चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है जो कि जड़ी बूटियों से तैयार होती है, फूलों से, मसालों से भी तैयार होती है, यहाँ तक कि पुदीने से भी चाय तैयार होती जो कि गर्मी में एक अच्छे पेय की तरह उपयोग में लाई जाती है। और तो और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ सौंफ से भी चाय तैयार की जाती है जहाँ पे गर्मी के समय में लोग उसको पी करके तरोताज़ा होते हैं और उनका हाजमा भी सही रहता है। विभिन्न प्रकार की चाय जो है हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं, लेकिन हाँ इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि अत्यधिक मात्रा में चाय कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है। तो हमको चाहिए कि हम उतनी ही लें जितनी की आवश्यकता हो। और कुछ कुछ चाय तो ऐसी होती हैं जो कि फूलों से तैयार होती है, सुगंध के साथ साथ हल्की मिठास भी देती हैं। तो आपको जो चाय पसंद हो उस चाय का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपन को ध्यान रखना है कि इसका हमारी सेहत पर क्या असर होता है। और भैया नो देखो जब अपन खेती किसानी की बात करते हैं तो देखो जाते कि खेती के हर चरण पर अपन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होते हैं। अब अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी हम सभी आपको विभिन्न प्रकार की भेंट वार्ताएँ सुनवाते हैं जिसको लाभ लेकर के अपने बहुत से किसान भैया रहे जो है खेती को और भी बेहतर तरीके से करते हैं। तो आज सुनते हैं भेंट वार्ता जिसका विषय है धान की सीधी बीज बुबाई। जानकारी देंगे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा और बातचीत करी है सोहन सिंह ने। तो भैया रो सुनते हैं।
1: किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चल रहा है और धीरे धीरे खरीफ की बुवाई का समय भी आ रहा है। खरीफ की बुवाई में हमारे किसान भाई धान्य फसलों की बोनी करते हैं और धान्य फसलों में धान की फसल प्रमुख है। धान की फसल हमारे किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार कई पद्धतियों से करते हैं। फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए धान की सीधी बुवाई करके भी हमारे किसान भाई किस तरह फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। कुशवाहा साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कुशवाहा साहब, जहाँ पर हमारे किसान भाई धान की फसल की बोनी करना चाह रहे हैं, जहाँ पर सुविधाएँ होती हैं वहाँ पर नर्सरी डालते हैं, उसके बाद खेत तैयार करके उसकी रोपाई करते हैं, डॉक्टर साहब आपका कंसेप्ट है कि हमारे किसान भाई खेत में सीधी बुवाई करके भी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या क्या कृषि क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारे किसान भाइयों को जो उत्पादन है उसमें किसी तरह का गिरावट ना आने।
2: ये जो धान की सीधी बुवाई तकनीक है इसमें धान के लिए जो पलेवा करके खेत को हम तैयार करते हैं, फिर उसके बाद पानी भरकर मचौवा करते हैं, मचौवा करने के बाद धान को बहुत नर्सरी से निकल कर लगाया जाता है। ये हमारी परंपरागत रोपा पद्धति है। इस पद्धति की तुलना में यदि हम सीधी बिजाई की बात करें तो इसमें उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आती है। जो बासमती किस्म की जो धान है ये हम सीधी बिजाई तकनीक से भी लगा सकते हैं, और बल्कि इसमें हमें 40-50% तक पानी की बचत हो जाती है यदि हम सीधी बिजाई तकनीक से धान को लगाते हैं। ग्वालियर जिले में देखा गया है कि 95 से लेकर 98% तक क्षेत्रों में रोपा पद्धति से ही धान लगाई जाती है, और हमारे जिले में लगभग 1,20,000 से लेकर 30,000 हेक्टेयर तक की बोनी जो है धान फसल की होती है। आज जब हमारी मौसम के विभाग की जो भविष्यवाणी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मानसून है इस बार कम बारिश की संभावना है, और साथ ही जो मानसून के समय लॉन्ग ड्राई स्पेल जिसको बोलते हैं, दो वर्षा काल के बीच में जो अंतर होता है वो ज़्यादा रहेगा, तो ऐसी परिस्थितियों में रोपा पद्धति की तुलना में यदि आप सीधी बिजाई तकनीक से धान लगाते हैं तो बहुत ही लाभकारी और अधिक उत्पादन देने वाली सिद्ध होगी। खेत की तैयारी के लिए अभी पलेवा करके खेत को बारीक भुरभुरा तैयार करना है और समतल करना है, जिससे कि पानी लगाते समय खेत में समान रूप से पानी का वितरण हो और कम पानी में सिंचाई पूरे खेत में हो जाए। संतलीकरण करना बहुत आवश्यक है। खेत को भुरभुरा बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें धान की जो बुनी होती है वो मात्र सरसों की तरह 2-2.5 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। बीज को बोने के पहले उपचार करना बहुत आवश्यक होता है, और इसको हम सीड प्राइमिंग बोलते हैं। प्राइमिंग में मतलब यह है कि बीज को हम पहले पानी में भिगोते हैं, 38 से लेकर 48 घंटे तक हम पानी भिगो कर रखेंगे, और उसके बाद इसको निकाल कर जब इसमें हल्का सा कुर फूटने लगता है उसके बाद हम इसको फफूंदनाशक दवा है, कार्बोडाइजम और डाइथेन-45 दोनों का जो मिश्रण आता है वो 3 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के मान से आप उपचार करके इसकी बोनी करना है। बीज उपचार करना आवश्यक है कि इसकी बोनी के लिए जो बीज की मशीन आती है बुवाई मशीन वो अलग है। इस बुवाई की मशीन की विशेषता ये होती है कि जो बीज वाला जो बक्सा होता है सीड ड्रिल का, उसमें चक्री लगी होती है प्लेट प्लास्टिक की जिसमें खांचे बने रहते हैं, उस खांचे में बीज फंसता है, और जैसे ही ये नली के पास चक्री जो घूमती है प्लेट, और घूमने के बाद बीज जो भरा हुआ है वो जब नली के ऊपर आता है तो उसमें एक ब्रश लगा हुआ है बीज को टकरा करके नीचे पाइप के अंदर गिरा देता है और उसकी बोनी हो जाती है। तो बिना धान के बीज को डैमेज किए गरारी वाली सीड ड्रिल में क्या होता है, धान का बीज टूट जाता है। इस मशीन की विशेषता ये है कि इसमें इंक्लाइन प्लेट लगी हुई है, तिरछी दीवार पर लगी हुई प्लेटें हैं जो खांचे में बीज को लेकर के नली के अंदर गिरा देती हैं और बीज टूटता नहीं है। तो इस प्रकार से इससे बोनी करनी है। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के मान से उपयोग करनी है। खाद की मात्रा वही रहेगी, रोपा पद्धति में लगाते हैं हम लोग, इसमें 160-40 नत्रजन स्फोर और पोटास की आवश्यकता होती है, वो हमें देना है।
1: तो डॉक्टर साहब ये खाद की मात्रा है तो ये बुवाई के समय आधार खाद के रूप में कर देनी है जब हमारे किसान भाई की सीधी बुवाई कर रहे हैं?
2: बिल्कुल, आधार खाद के रूप में आधी नत्रजन की मात्रा यानी 50 किलोग्राम नत्रजन और जो 60 किलोग्राम इसमें हमने बताया फास्फोरस की मात्रा है और साथ में 40 किलोग्राम इसमें पोटास, ये आपको बोते समय ही देना है। शेष नत्रजन की जो आधी मात्रा बचती है उसको हम 2 से 3 भागों में बांट करके जब हमारी फसल 25 दिन की हो उसके बाद 40 दिन पर फिर 55 दिन पर हमें धान में ये 3 भागों में बांट करके इसको देना है।
1: डॉक्टर साहब सीधे खेत में धान की बिजाई की आप बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब इसके लिए भूमि में नमी होना आवश्यक है,
2: इसलिए मैंने कहा खेत को भुरभुरा बनाना है और पाटा लगा करके समतल करके तुरंत उसमें बोनिंग करनी है, क्योंकि हमें बीज की गहराई मात्र 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरा रखना है। समस्या और जो आती है वो खरपतवार प्रबंधन की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि हम रोपा पद्धति में पानी इसलिए भरते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार ना हो गए। इस पद्धति में चूंकि खेत में पानी नहीं भरा जाना है पूरी फसल अवधि में, उसके नियंत्रण के लिए हमें इसमें 2 चीज़ें करना पड़ती हैं। बोने के तुरंत बाद हमें इसमें पेंडीमिथिलिन शाकनाशी या ऑक्सिल फ्लोरोफेन शाकनाशी जो होता है इसका छिड़काव करना पड़ता है। ये हमारा अंकुरण पूर्ण शाकनाशी है जो खरपतवारों को बीज को जमने नहीं देता है। ये छिड़काव हम बोने के तुरंत बाद करेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी में नमी हो, और उसके बाद जब फसल हमारी 25 दिन की हो जाती है तब हमें इसमें बिस्पायरेट सोडियम, ये दवा भी हम 250 ml प्रति हेक्टर के मान से, बिस्पायरेट सोडियम की मात्रा लगती है वो 25 ग्राम प्रति हेक्टर के मान से लगती है। बाजार में जो उत्पाद मिलता है इसमें 10% आता है, 250 ml प्रति हेक्टर के मान से आपको 400 से 500 लीटर पानी मिला करके फसल जो हमारी 25 से 30 दिन की है और खेत में नमी हो मिट्टी में तब हमें छिड़काव कर देनी है। तो जो खरपतवार 2-3 पत्ती वाली अवस्था में होते हैं उस अवस्था में वह सभी नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद धान की फसल लंबाई पकड़ लेती है और उसमें खरपतवार की समस्या पर नहीं रह पाती।
1: डॉक्टर साहब जिस पद्धति की आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं, किसान भाइयों की जो बोनी है वो भी लाइनों में होगी?
2: बिल्कुल, कतार में बोनी होती है, कतार के बीच का फासला जो है वो गेहूँ की तरह रहता है, बिल्कुल 22.5 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी इसमें 25 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, और पौधे से पौधे की दूरी तो उसमें जब हमारा यदि सीड्रिल में सेट कर देते हैं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के मान से, तो अपने आप बीज दर बुवाई मशीन के द्वारा एक समान अंतराल पर पौधे लग जाते हैं।
1: आप जो सीड्रिल बता रहे हैं डॉक्टर

0: पैसा वो हर किसान भाई के पास नहीं होते, तो क्या जो हायरिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर ये सीड ड्रिल डाक्टर उपलब्ध हैं?
1: ये अपने जिले में जो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं उन कस्टम हायरिंग सेंटर पर ये मशीन उपलब्ध है। हमारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग है वहाँ पर ये मशीन उपलब्ध है। कुछ एनजीओस भी हमने देखा है ग्वालियर में, एक दो एनजीओस डबरा में जो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उनके पास भी ये मशीन उपलब्ध है। तो किसान भाई वहाँ से ये मशीन लेकर के इससे बोनी कर सकते हैं और इसमें बीज बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं होता है, अच्छा अंकुरण मिलता है। बस जरूरत है सीड प्राइमिंग, जो बीज को पानी में भिगो करके बोने की बात है, और साथ में इसमें खरपतवार प्रबंधन के जो दो बार शाकनाशी दवाओं का उपयोग करना होता है, प्री इमरजेंस है जो अंकुरण से पहले जो डाला जाता है, और एक जो है वो अंकुरण के बाद 25 से 30 दिन की अवस्था पर डलता है।
0: डॉक्टर इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो धान के जो बीज हम पानी में भिगो रहे हैं उनका अंकुरण न होने पाए।
1: अंकुरण हल्का सा कुर फूटना चाहिए उसमें, उस अवस्था में ये हमको बोनी करना है। फिर उसका उद्देश्य ये है कि 25 मई से लेकर के 5 जून के बीच में इसकी बोनी होना चाहिए, यानी बारिश आने के पहले हमारे खेत में धान की फसल कम से कम 25-30 दिन की हो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे मान लो आपने लेट बोनी की धान की सीधी बिजाई पद्धति से, तो ये पानी बारिश यदि ज़्यादा आ गई तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है बोनी के समय का, वो ध्यान रखें कि हमें 5 जून तक किसी भी हालत में बोनी करनी ही है। यह पद्धति में एक आवश्यकता है वो इस बात की है कि किसान के पास अस्योर्ड इरीगेशन यानी सुनिश्चित सिंचाई का साधन होना चाहिए, ताकि वो पलेवा भी कर सके अभी और बाद में खेत में जब पानी लगाने वाली बात होती है तो सिंचाई भी कर सके। जैसे ही हल्के बाल जैसे जो क्रैक्स बनते हैं मिट्टी में, उस अवस्था में ही हल्का पानी गेहूँ की तरह इसमें लगा दिया जाता है, कभी भी खेत में पानी भरा नहीं जाता है। हल्की सिंचाई करना है क्योंकि काली मिट्टी में धान लगता है तो उसमें दरार फटने की समस्या आती है, तो ध्यान ये रखना है कि जैसे ही हेयर लाइक क्रैक्स बनते हैं वैसे ही उसमें हल्का पानी लगा देनी है। और इसीलिए हमने आपसे कहा है कि पहले खेत को समतल करना आवश्यक होता है, ताकि एक समान रूप से खेत में पानी फैल जाए और दरारें यदि ज़्यादा न फटें। इसमें बड़ा अच्छा काम यह है कि बारिश की हमें डिपेंडेंसी नहीं रहती हमारी और पानी भी बच रहा है। मचौवा करते समय खेत में बहुत सारा पानी हमारा खेत में लगभग 4 इंच पानी तक भर देते हैं खेत में, उसके बाद खेत में मचौवा करते हैं जिसमें डीजल खपत भी बहुत होती है। 1 हेक्टेयर खेत में मचौवा करने के लिए करीबन हम 48 लीटर डीजल जलाते हैं, तो ये डीजल की बचत भी होगी हमारी।
0: डॉक्टर साहब इस पद्धति से हमारे किसान भाइयों को एक और लाभ हो सकता है कि कभी कभी बरसात जाने लगती है तो उस समय हमारे किसान भाइयों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, जब मानसून विदाई की ओर होगा तब तक हमारी फसल तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल परिपक्व अवस्था में फसल आ जाएगी और खेत में अतिरिक्त पानी की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।
0: कभी कभी डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को खेत गहरे होते हैं, धान की फसल है वो नवंबर दिसंबर तक चलती है, और इस पद्धति से हमारे के किसान भाई अगर खेती करते हैं तो उन्हें जो आगामी रबी की फसल है उसके लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
1: समय पर धान की कटाई होगी, सितंबर आखिरी से लेकर के अक्टूबर 15-20 तक इसकी कटाई हो जाएगी और आप खेत में समय पर रबी की फसल जो गेहूँ लगाते हैं उसकी बोनी कर सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है कि खेत में समय से फसल की कटाई हो जाती है और अतिरिक्त पानी की इसमें बचत भी होती है, पानी हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ता है।
0: डॉक्टर साहब अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई अगर धान की सीधी बिजाई करके फसल लेना चाहते हैं तो उन्हें धान की फसल से अधिक लाभ प्राप्त हो सके?
1: बीज को हमें पानी में भिगोने के बाद ही लगाना है जिससे अंकुरण में अच्छा मिल जाए। बोनी के तुरंत बाद पीछे पीछे इसमें शाकनाशी दवा का छिड़काव करना है ताकि खरपतवार शुरुआत में ही फसल को ना दबा पाए। जब फसल हमारी 25-30 दिन की होती है उस अवस्था में भी हमें एक शाकनाशी का छिड़काव करें जिससे कि फसल में कहीं भी खरपतवारों की वजह से फसल की वृद्धि बढ़वार और उसका विकास प्रभावित ना हो।
0: डॉक्टर साहब आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को धान की सीधी पद्धति से बीज बिजाई के ऊपर जानकारी दी और हमारे किसान भाई इस नई तकनीकी को अवश्य अपनाएंगे और अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुभैया बहनों अब अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता जिसका विषय था धान की सीधी बीज बुवाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा और बातचीत करी थी सोहन सिंह ने। तो भैया देखो अपन विभिन्न प्रकार की जो फसलें लगाते हैं उनमें सही तरीके से अगर अपने पास जानकारी होती है, साथ में अपन किस चीज़ों के माध्यम से अपनी फसल को बेहतर तरीके से बुआई कर सकते हैं बीजों का, अगर जानकारी अपन को समय रहते मिल जाती है तो हम अपनी फसल को और भी बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ कम पानी में जब फसल जैसे धान को बोला जाता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने अपन को बातें बताई उससे अपन को पता चला कि कम पानी की मात्रा से भी अपन धान की अच्छी बुआई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यक्रम जो किसान भैया सुन रहे हुए हैं तो उन्हें जानकारी से लाभ मिले। और भैया देखो कहते हैं ना कि अपनों जो देश है बहुत सी विभिन्नताओं में जो है एकता को समेटे हुई है, और आज जो है अगर देखो जाए तो हर जगह विविधता के साथ साथ आज हम सभी में आपसी प्रेम है और संवाद भी बराबर है, जिसके कारण आज हम विभिन्न प्रकार की जो है संस्कृतियों के बारे में जान रहे हैं और सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इतनी विविधता होने के बाद भी अपने देश में आज भी एकता बनी हुई है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर लोग रहते हैं जिनकी भाषाएं अलग हैं, बोलियां अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, यहाँ तक कि वेशभूषा और खान पान भी अलग है। कहते हैं ना कि पग पग पे जो है हवा बदलत है, तो डग डग पे जो है पानी भी बदलत है, उसी तरीके से बोली भी जो है बदलत है। तो उसी के साथ धीरे धीरे करके जो है विभिन्नताएं भी बढ़ती हैं। लेकिन आज यह आवागमन के अच्छे साधन होने के कारण और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होने के कारण विभिन्न संस्कृतियां अपने देश में अच्छी तरीके से फल रही हैं, फूल रही हैं और निष्पक्ष होकर अपना जीवन जी रही हैं। विविधता हमारी आज देखा जाए तो सही मायने में ताकत बन गई है, और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को बढ़ावा मिलने से आज हमारे देश की एक अलग ही पहचान बनी है, और विभिन्न संस्कृतियों ने अपने देश में ही नहीं विदेश में भी नाम कमाया है। विविधता के कारण आज हम सब एक शक्ति में बंध गए हैं। हर संस्कृति को हमें चाहिए कि हम सम्मान दें, उनको आगे बढ़ने का सहयोग करें, और अलग अलग रंग के होने के बाद भी हम सब एक साथ मिलजुल कर साथ में रहें। और अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है राजू पटेल व साथी का।
3: हारे डारे रइयो डोर,
4: सही बात है।

भैया यार देखो, प्यार की डोर जो है अपन को सभी को डारे रखने हैं, अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों में, और तो और अपने पर्यावरण की ओर भी। और जा अपन सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने जो भी अपनी प्रकृति ने अपन को दो है बाई को अच्छी तरीके से सहेजें, संभालें और उसको व्यर्थ होने से रोकें। तभी भैया रो जो है अपन अपने सही मायने में अपने कर्तव्य को निर्वाह कर सकते हैं। अब देखो भैया, कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। थोड़ी सी समझदारी दिखा के अपन जो है बहुत सी चीज़ों को अपन बचा सकते हैं, यहाँ तक कि समय की भी अपन बचत कर सकते हैं। इस समय अपन देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है धीरे धीरे करके जो डिजिटल जो व्यवस्थाएं हैं भी बढ़ती जा रही हैं। इससे देखो अपने बहुत से लाभ भी हैं, इससे अपने समय की बचत होती है, साथ ही साथ अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए में जो अपन को अपनों आय करने पड़ रहा था उसे भी अपन की बचत हो जाती। तो अपन यही कहें कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग जो है तकनीकी ज्ञान भी सीखें और हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें, तभी हम जो है सही मायने में अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख सकते हैं। चाहे खेती की बात हो या घर गृहस्थी की, सभी की जिम्मेदारी तभी उठा सकते हैं जबकि अपन सजग रहें, समझदारी से काम लें। और भैयरों, अब हो रही है चलबे की बेरा। सभी किसान भैयरों को स्वाति बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: Σουρχιώμη.
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पांच देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक पांच देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। पांच देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
2: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब यूएस डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
3: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड साझेदारी का जीवंत सेतु है। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसलेट डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसलेट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खम्बात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढ़र जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी।

0: सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डस्ट सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
2: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
3: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहाँ के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
4: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार

0: सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
1: 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कर प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और UAE के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। मुद्दत फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

और आइए आप सुनते हैं जावाज फिल्म का गीत। मनहर और साधना सरगम ने इस गीत को गाया है, इंदीवर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संगीत फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ें, संतोष आनंद की शब्द रचना और संगीतकार आनंद मिलिंद।

लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गीत, कुमार सानू की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: कुमार सानू के गाए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि श्री राग तेलंग,
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
6: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
4: अमेरिका एंड इंडिया,
5: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से

0: पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीराजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीराजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है प्रेम बंधन।

ये गीत जानी दुश्मन फिल्म से है, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, वर्मा मलिक की शब्द रचना और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म अमर अकबर एंथोनी, किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेमचरण खेमरिया। कार्यक्रम का पहला गीत स्वर्ग से सुंदर फिल्म के लिए फरमाइश की है। ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोड़कर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती जौंधले। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं स्वर्ग से सुंदर फिल्म का गीत किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेला।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। कटारा हिल्स भोपाल से योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, ललिताबाई भारतीय, बाबड़िया कला भोपाल से फरमाइश की है। डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता श्याम नानी ने, और साथ में ही इस गीत को सुनना चाहते हैं शाश्वत भारतीय और अमिता भारतीय, दुर्गा भारतीय, दिल्ली शहर मोरी गेट से इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

अगली फरमाइश धर्मात्मा फिल्म के गीत के लिए आई है, किशोर कुमार की आवाज़, इंदीवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुज्तबा खान, रऊफ शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइशी पत्र भेजा है टीडी मल्होत्रा, रितेक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। और कालका से फरमाइश की है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गीत।

पुणे से फरमाइश करते हैं प्रियंका, पंकज, आर्य, चरुण और वरुण, बाबा साहेब बड़ोदे और चंद्रप्रभा बड़ोदे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। इंदौर से फरमाइश की है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आप सभी ने फरमाइश की है बागी फिल्म के गीत की। इसे गाया है अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश की है।

अब आज का आपके फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए पंडित उल्हास काशालकर का ख्याल गायन, राग है यमन कल्याण।

0: अभी आपने पंडित उल्हास कसालकर का ख्याल गायन सुना, राग था यमन कल्याण। आवाज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

0: ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।